वफाना राज आई तुझे हर जाई खबरों का हार्ट सॉन्ग। आपके दिल अगर टूट गया है या टूटने वाला है या चोट लग गया है तो आपकी आंखों में हम आंसू नहीं प्यार देखना चाहते हैं। इस सॉन्ग से आपके जो दर्द है उसको हम भरते हैं, तो आओ मिलकर ये इस गीत को सुना जाए।

दर्द भरी खबरों को हर सॉन्ग्स किसकी किसी के, अगर जो आपके यानी कि दिल टूट गया है या किसी ने तोड़ दिया है तो मत घबराना, जो टूट जाता है वो एक दिन जुड़ भी जाता है। आपको हम बताते हैं कि तड़प तड़प के इस दिल को लोग याद करते हैं और इस दिल से पुकारते हैं, लेकिन जब तक उसकी समय नहीं आएंगे वो दिल नहीं जुड़ते हैं। तो एक और गीत की ओर चला जाए।

नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी, समीर चाह रहा है। पापा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी, उठो। समीर हमेशा के लिए जा रहा है, जाकर देखा उसे, फिर शायद जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। जाओ नंदिनी।

मोहब्बत में। और ये सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों, और उसके बाद तो हम चलते हैं और दर्द भरी गीतों का प्रोग्राम आज हम आज चलाते हैं।

तो रोना पड़ जाती है। दोस्तों ये दर्द भरी सॉन्ग है जिसका दिल टूट गया है, अगर प्यार में धोखा भी मिल चुका है तो सबके लिए ये गीत है।

और आप नरासी खुदा और खैर करे। और इस गीत को मांग किया है सुरेश हरि प्रसाद। है न करने मensen, als je ook wil bellen om een nummer aan te vragen, kunt u bellen op 070-213-6598. Ben ik op dit moment bereikbaar? Ghadi ko dekha jaye to 20 minute ho gaya hai 8 bajne mein, to hum geet ko chalate hain Rosa ke liye.

और जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, क्या आपको मालूम है? आपको पता है कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं हमारे यारों? तो जरूर हमसे आप बता देना। हम चलते हैं अलका की ओर, अलका याग्निक की ओर, और फिल्म का नाम है खल नायक। इस नहीं सोन ओ फिल्म में से मार इट इज हेल मोय नंबर लात वेव दी ओक खान draaien voor de mensen die namelijk niet alleen oude nummers, maar ook nieuwe nummers horen. Het is niet helemaal nieuw, maar toch wel.

की में होके सवार चली रही। फिल्म का नाम है खलनायक। खलनायक के बाद हम जाते हैं, क्या आपको भी प्यार हो चुका है और अपने प्यारी को कहते हैं कि आज नहीं कल नहीं लेकिन 100 साल पहले भी हमें तुझसे मोहब्बत थे। नाइटिंगेल लता जी, आशा परेख देवानंद का ये फिल्म है। सॉन्ग है पद्मा श्री मोहम्मद रफी और नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। बहुत लोग इस गीत को पसंद करते हैं, मुझे यही उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा लगेगी। कारण कि ये गीत सुनते सुनते सुनते सुनते लेकिन दिल कभी भरता ही नहीं है। आओ सुना जाए।

और 100 साल पहले तो मुझे प्यार था, मालूम नहीं है कि 100 साल पहले हम क्या थे दोस्तों, वो तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक गीत आपको हम सुनाते हैं और वो है कभी कभी दिल से लग जा गले। नैतिकी लता जी फिल्म के नाम है, मूवी का नाम है वो कौन थी, वो कौन थी नहीं कहती हॉन्टेड एंड फिनेस। इस फिल्म में काम किया है मनोज कुमार, साधना, हेलन, प्रेम चोपड़ा। आओ चला जाए लग जा गले में, क्या है

लग जाना लग जा गले तो फिर ये मुलाकात हो ना हो। नाइटिंगेल लता जी फिल्म का नाम, वो कौन थी और ये गीत जो है। दोस्तों हम चलते हैं हुस्न वाले, तेरा जवाब नहीं है। किसी से जब प्यार करते हैं तो उसका जवाब तो कभी हो ना हो, हो ना सके। परमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है, मूवी के नाम है घराना 1961।

हुस्ने वाले तेरा जवाब नहीं है, और हुस्ने वाले तेरा जवाब के बाद हम जाते हैं, और वो भी एक ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग आज के मूड में है, वो है और ये है फिल्म का नाम है, मूवी का नाम है आपकी परिछाइयां। निकट इन होंदत एंड फिनस अस्तक मेंजे मैं निगाहें तेरी चेहरे से, परमाश्री मोहम्मद रफी, एक रोमांटिक सॉन्ग है जिस फिल्म में धर्मेंद्र काम किया है। आओ सुना जाए ये क्या है भाई, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा गीत होगा।

और दोस्तों और मैं निगाहे तेरी चेहरे से परमान श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है। उसके बाद हम चलते हैं एक सुपर हिट ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग है और वो है माइती मुकेश नाइटिंगेल लता जी का एक फिल्म है। आपको ये गीत जरूर सुनना चाहिए।

0: नैनू में क्या आने वसी फिल्म के नाम है वारंट मेंशन, दैट इज द इंग्लिश नाम, और एक हेला मोया जोंग जो आपके हम लिए चला चुका है। तो ये बात है हमारे यारो, dan gaan we namelijk naar andere mooie nummer 4. Film ke naam hai Hong Kong 1962 ke. Ik was nog niet geboren mensen. En staat Oh My God Hasinoko aur Q Didi Tune hai. Aur is film mein Jaise Dekha hai. तो ये फिल्म हांगकांग है, परमाचिन मोहम्मद रफी आशा जी का फिल्म है, ओम प्रकाश एक्टर किया है इस फिल्म में, काम किया है, आओ सुना जाए।
1: ओ माय गॉड,

ये भी एक मस्त बड़ी जोंग है। फिल्म के नाम है फागुन, 1958 का, was ik nog niet in geboren mensen, maar het is een ontzettend mooie liedje van Padma Shri Mohammed Rafi aur Asha ji ka hai. Isme Madhu Bala Bharat Bhushan is film mein kaam kiya hai. आओ मिलकर सुना जाए फॉर गीता जी।

आँच में जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई वो, और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यार वो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बांती, चोली के बांती क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते हैं और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

0: और नौ एंटी मारे बेरी यू फन हैप्पी ऑल टेट एंट्री सेंसेशन
1: चढ़ता है
0: ऑन रेडियो फॉर वन।

वो नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना। नींद में बहुत कुछ हो जाने में

मेरा मन ही न माने मेरे प्यारे सुनने वालों, मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना। फिल्म तुलसीदास से ये गीत आप ही के लिए चुनकर और लाया गया है। मैं सोचती हूँ, जानती हूँ कि ये हमारी यादें जो है ज़रूर से ताज़ा कर देते होंगे।

रफ़ी जी के आवाज़ में, रफ़ी जी के आवाज़ में, मधुर आवाज़ में हमको सुना दे कि ज़िंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, अगर हम सफ़र एक अच्छा मिल जाए, जीवन साथी एक अच्छा मिल जाए, तो एक नया मोड़ मिल जाता है जीवन में। आपको तमाम खुशियाँ, खुश नसीबियाँ पेश किया जाता है सुनने वालों, आप ही का फ़ोन हिंदुस्तानी रेडियो के ज़रिए से।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, और मेरी खता क्या। फिल्म का नाम छोटी सी मुलाकात। छोटी सी मुलाकात से ये सुंदर सा गीत निकाला गया और ये गीत रिलीज किया गया है 1 दिसंबर 1967 में। 1 दिसंबर 1967 में ये सुंदर सा गीत रिलीज किया गया और फिल्म का नाम जैसे हमने बताया छोटी सी मुलाकात।

फिल्म दो बदन से ये सुंदर सा गीत निकाला गया आप ही के लिए मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों। जिंदगी जिंदगी चल जिंदगी चल जिंदगी आज थोड़ी बात करते हैं, चल जिंदगी आज थोड़ी बात करते हैं, जो भी छूट गया है, जो भी छूट गया है पीछे अब उन्हीं से मुलाकात करते हैं, जो भी छूट गया है पीछे आज उन्हीं से मुलाकात करते हैं। ख्वाहिशों का जो सिरा पल्लू में बांध लिया है, ख्वाहिशों का जो सिरा पल्लू में बांध लिया था, अब खोल गांठ उसकी, अब खोल गांठ उसकी, उन्हें आबाद करते हैं। सब कुछ बटोर नहीं पाएंगे, सब कुछ बटोर नहीं पाएंगे इन कांपते हाथों से, इन कांपते हाथों में अब, मगर चंद खुशियां तो थामने की, चंद खुशियों को थामने की शुरुआत करते हैं। माना ढलती हुई उम्र और यारदाश्त की झड़ती हुई पत्ते हैं, माना कि यारदाश्त झड़ती हुई पत्ते हैं, चलो इन्हीं के संग अब अपने तमन्नाओं से मुलाकात करते हैं। फिल्म का नाम प्यार का सागर, प्यार का सागर हमको सुनाएंगे रफ़ी जी और आशा भोसले जी की आवाज़ में।

सदाबहार ओल्ड इज गोल्ड आपके लिए, जी हाँ आप ही के लिए पेश किया जाता है। कमाल की बात है यारो, कमाल की बात है ये सब जो हम आपको यहाँ से बताने को जा रही है, जरा आप सुने। के होंठ होंठ कपड़ा नहीं है फिर भी सिल जाते हैं, होंठ कपड़ा नहीं है फिर भी सिल जाते हैं, दुश्मनी बीच नहीं फिर भी बोई जाते हैं, बीच यानी कि बिया, दुश्मनी बीच नहीं फिर भी बोई जाते हैं। आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाती है। इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है, इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाता है, जंग यानी कि मोर्चा, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाता है। आंखें तलाव नहीं फिर भी भर जाता है, तलाव यानी कि फेफर, आंखें तलाव नहीं फिर भी भर जाती है। और किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, जैसे सखियाँ रूठ जाते हैं वैसे ही कहते हैं कि किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है। एक बार फिर, होंठ कपड़ा नहीं फिर भी सिल जाती है, होंठ कपड़ा नहीं फिर भी सिल जाता है, दुश्मनी बीच नहीं फिर भी बोई जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाता है, आंखें तलाव नहीं फिर भी भर जाती है, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है।

बात सही है, नसीब में जिसको जो लिखाएगा लिखा है वो अवश्य ही सामने ही आएगा। रफ़ी जी की आवाज़ में फिल्म का नाम दो बदन।

की औलाद की बेरुखी, औलाद के बारे में यह कुछ लाइनें आपको यहाँ पढ़कर सुना देती हूँ। औलाद के बेरुखी, माना कि उम्र के हिसाब से बुढ़ापा सबको आता है, माना कि उम्र के हिसाब से बुढ़ापा सबको आता है, मगर जब कभी औलाद की बेरुखी मन को कर देती है दुखी, तो ये बुढ़ापा जवानी में ही दहलीज लांग जाता है। जिसको कांधे पर बैठा कर दिखाई थी दुनिया सारी, आज वही दुनियादारी सिखाते हैं। क्यों बात बात पर बच्चे माँ बाप को आँख दिखाते हैं, क्यों बात बात पर बच्चे माँ बाप को आँख दिखाते हैं। किताबी ज्ञान का अहंकार लेकर ये ना, किताबी ज्ञान का अहंकार लेकर ये ना बड़ों के बेकदरी क्या करे, उनके अनुभव और उम्र के कुछ तो कदर किया करो। माना कि नए ज़माने के तरीकों को समझना पड़ता है, कौन सी चीज़ कैसे चलती है ये बताना पड़ता है, पर उसको भी एक तरीका होता है अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बात करने का एक तरीका होता है। औलाद की बेरुखी। बच्चे एक बात जो 10 बार पूछते हैं, तो माँ बाप प्रेम से प्यार से उसे हर बात जवाब देते हैं। अगर और आगे में चल के वही माँ बाप जो बूढ़े हो जाते हैं तो सवाल पूछते हैं जानने के लिए, तो बच्चे जो है तो एक दो बार में वो गुस्सा हो जाता है, जबकि नहीं होना चाहिए। माँ बाप कंधे पर बिठाकर उनको दुनियादारी दिखाते हैं, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं माँ बाप को दुनियादारी बताते हैं।

टाइटल सॉन्ग निकाला गया है। दिल ने फिर याद किया रफ़ी, मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में।

मुकेश लता जी की आवाज़ में। फिल्म का नाम पत्थर का सनम, पत्थर के सनम। नेहंतीन सीफनन सेस्तक में ये पिक्चराइज किया फिल्म है। इसमें मनोज कुमार वहीदा रहमान जी ने अपना भूमिका निभाई है। मेरे ख्याल से 58 साल पुराना ये फिल्म है, पर ऐसा लगता नहीं है अगर हम गीतों सुने जैसे अभी अभी कल ही गाई हुए है।

दीवाना दिल खो बैठा तेरे ही कूचे में, रफ़ी जी की आवाज़ में, फिल्म का नाम ही रामजाम। और ये गीत और ये फिल्म रिलीज़ किया गया है 19 जुलाई 1973 में कंपोजर मदन मोहन साहब।

वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, प्रिय भक्तजनों, प्रिय आत्माओं, आपको हार्दिक से स्वागत है आज इस खूबसूरत दिवस में। और स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम, नमस्कार हो जी। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं है। करो दिन के शुरुआत मधुर बाणी के साथ, पेश यहाँ करेंगे आप ही का स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम। तो सुप्रभात कहते हुए आपको हम लेकर चलते हैं। धनाक्ष श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से सुनेंगे हम हनुमान चालीसा।

सुंदर हनुमान चालीसा से आरंभ किया गया है आप ही का स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम। जी हाँ, और पेश किया गया है दनाह के रहने वाली श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से। हम सभी को एक शुभ प्रभात कहते हुए और आगे हम आपको लेकर चलते हैं दनाह से खमें तराचलित श्रीमती लेना बाबूराम जी के तरफ से। सुनेंगे हम सत्यम शिवम और सुंदरम।

0: बाबूजी।
1: जय सिंह, ये आवाज किसकी है?
0: इसी गांव की लड़की है, रोज सुबह गाना गाकर गांव को जगाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर ये गाना ना गाए तो
1: शायद सूरज उदय नहीं होगा। नाम क्या है इसका?
0: रूपा।
1: रूपा, जिसकी आवाज इतनी सुंदर है, उसका रूप कितना सुंदर होगा।

पेश किया गया है दनहाख, दनहाख से खमेंत राजलित लैनम बाबू राम जी की तरफ से ये सुंदर सा सत्यम शिवम सुंदरम आप ही का स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में आपको हम लेकर चलते हैं सुरीनाम अली फॉर्नो मैनकंडा हुक इंदिरा गांधी वैक से, सुरीनाम अली फॉर्नो हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर इस खूबसूरत दिवस में पेश कर रहा है सभी भक्त प्राणियों के वास्ते।

सुंदर सा दुर्गा चालीसा यहाँ से आपके लिए हमने चला दी है और हम सब मिलकर श्रवण की है। कितने सुंदर लगे हैं आज इस सुबह के कार्यक्रम में जो हम मिलकर श्रवण करते हैं। आपको हम लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, चलने से पहले बता दे, ये सुंदर सा दुर्गा चालीसा पेश किया गया है श्री नाम अली फोन मैन का नाम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर की तरफ से सुप्रभात और मंगलमय दिवस कह रहा है हम सभी के वास्ते। आपको लेकर चलते हैं दिनांक मकाई स्त्रात नंबर 6 से, दिनांक मकाई स्त्रात नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाहोन, फाहोन हिंदू बास स्कूल फरेनिंग अलगमेन हिंदू अंडरवेस नीदरलैंड के तरफ से सुंदर सा सरस्वती भजन।

शारदे माँ सरस्वती से सुंदर सा भजन हमने यहाँ से श्रवण की है, पेश किया गया है दनाख ने। जी हाँ, दनाख मका इसरात नंबर 6 से, दनाख मका इसरात नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फहन फहन हिंदू बास स्कूल फरेनखें अलखमेन हिंदू ऑनरवेज नीदरलैंड की तरफ से पढ़ चलते हैं आपको लेकर दनाख इकनुतो स्त्रात नंबर 10 से, दनाख इकनुतो स्त्रात नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार, संस्था हिंदी प्रचार नीदरलैंड से परिवार चांद गुरबीन श्रद्धा भक्ति के साथ सुंदर सा गणेश भजन।

जी हाँ, तेरी जय हो, जय जय गौरी लाल। और ये सुंदर सा गणपति वंदना भजन हमने यहाँ से सुने, सलीम जी के आवाज़ में पेश किया गया है। दनाखे कनुत उस्त्रात नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार नीदरलैंड से परिवार चानगुर बीन श्रद्धा भक्ति और मंगलमय दिवस हम सभी को पेश कर रहा है। आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जहाँ से आपको आपके लिए आप ही का स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम लेकर यहाँ से हम जारी करते हैं। रोटरडम होपफुली टेक्सस वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर 7 में रोटरडम वेस्ट ब्लॉक माकरस्ट्रैट 64 तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी की जरिए से शुभ प्रभात कहते हुए

परमभूतेश्वर शंकराय शिवा शिवा शिवा शंकर महादेवन के आवाज़ में यहाँ से हमने और मिलकर श्रवण कर ली है ये सुंदर सा शिव भजन आप ही का स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में जो शामिल किया गया है रोटरडम होपफुली टेक्सास वेक नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर से साथ में रोटरडम वेस्ट ब्लॉक माकरसाथ सेशन फेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के जरिए से ये सुंदर सुंदर सा भजन आपके लिए पेश किया जाता है आप ही का स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में। आपको हम लेकर चलते हैं देनाख लाइस कंफेन फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा हमको सुनाते हैं

जरूर से अम्मे मैया, जरूर से हम सबके जीवन संवारेगी। बेशक आप याद करेगी माँ को, माँ आपको ज़रूर से याद करेगी। देना खलेस कफेन फोर पारक से आनंद अर्जुन शर्मा, आनंद अर्जुन शर्मा ख्रोत हानल बे फे। एक बार फिर यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं देन हाँ लेस कफेन फोर पारक से। इस बार है सुंदर ख्रोत हांदल, सुंदर ख्रोत हांदल ए खुरुंते ए फ्रोइड। इनका मालिक है परशुराम, श्रीमान परशुराम मोहनलाल। और श्रीमान परशुराम मोहनलाल के तरफ से एक बार फिर हम सुनेंगे माता भजन।

0: सभी लोग हर्षित थे, मंगन में हैं।
1: ये माँ खुश रहेगी तभी तो वो माँ खुश रहेगी।
0: माँ का बुलावा आवा आया है। जोबिन नवदयाल जी की आवाज़ में ये सुंदर सा माँ भजन हमको सुना दिए। पेश किया गया है दनाखले सफ़ेन फोर पारक से। सुंदर खरोत एफरत इनका मालिक जो है श्रीमान परशुराम मोहनलाल। दनाखला सफ़ेन फोर पारक से बाव एंड ओनर हाउस बदरेफ बाव एंड ओनर हाउस बदरेफ जो श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण के निर्देशन में सुनेंगे हम श्रीमान हरिदत्त देव नारायण की तरफ से।

लड्डुओं का भोग लगाओ रे गणेशा। कितनी सुंदर से बच्चों की आवाज़ में हमने यहाँ से सुन ली गणेश भजन पेश किया गया है देन हाखलाइस कंफेन फोर पार्क से। सुन ख्रोथांदल इनका भजन तो हो गया है, हमको ये कहना चाहिए कि देन हाखलाइस कंफेन फोर पार्क से बाओ एंड ओनर हाउस बद्रैफ। बाओ एंड ओनर हाउस बद्रैफ जो श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण के निर्देशन में है और ये सुंदर सा गणेश भजन यहाँ से मिलकर हमने श्रवण करी है।

0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
1: यहाँ से आपके लिए जो अभी हमने स्पॉन्सर जो हम यहाँ से स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम आपके लिए पेश कर रहे हैं

धवल जी की आवाज में हम यहाँ से श्रवण की है 108 नाम श्री दुर्गा मैया के, और आपको हम लेकर चलते हैं धन्यवाद के रूप में फाउंडर रेडियो के डायरेक्ट स्टाफ पर्सनल सभी फ्रेवेलर्स के तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते

अभी आप सुन रहे थे तुमसे अलग मैं रह नहीं सकता, योर माय जान, उदित नारायण और श्रेया घोषाल आपको सुनाने वाले हैं और ये गीत हम पेश करते हैं सभी प्यार करने वालों के नाम, और ख़ास करके ये गीत भी हम पेश करते हैं यूसेफ की तरफ से सीला के वास्ते, बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ। चलिए मिलकर सुनते हैं।

जमाने की सारी खुशी मिल गई है हमें, तुम मिले जिंदगी मिल गई है, अभी आप सुन रहे थे। और ये गीत हमने चलाए हैं यूसेफ के तरफ से शीला के वास्ते, और शीला के तरफ से यूसेफ जी के वास्ते, यानी एक दूजे के वास्ते। ये दोनों ने ये गीत गुमान किए थे। यमला पगला दीवाना इसी फिल्म से हम पेश करते हैं। सौ बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करे,

यमला पगला दीवाना से भी आप सुन रहे थे। सौ बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करे, जहर है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सुनने वालों ए बेखबर।

सिनेमो सिनेम भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी जूम से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, और एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करने वाले हैं शान की आवाज़ में आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी कोई मेरे दिल से पूछे। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मत हो उदास मैं हूँ तेरे पास हमेशा हमेशा।

अभी आप सुन रहे थे मत हो उदास मैं हूँ तेरे पास हमेशा हमेशा फ्रॉम द मूवी कोई मेरे दिल से पूछे। सुनने वालों जरा सा हम देखे, हाँ सोनू निगम के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं और ये दोनों मिलकर आपको क्या सुनाने वाले हैं, छमियां।

गई ले गई ले गई ले गई दिल ले गई, देखो मेरी छमिया मेरा दिल ले गई। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों बीवी नंबर वन। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं चुनरी चुनरी।

जाना छुले मेरी चुनरी सनम, अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, प्यार दिलों का मेला है फ्रॉम द मूवी दुल्हन हम ले जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे प्यार दिलों का मेला है और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दिल का रिश्ता से आप सुनेंगे दैया दैया दैया रे।

दैया दैया दैया रे अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, और एक आखिरी गीत हम पेश करते हैं आज के इस प्रोग्राम में।

विशाल और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, इश्क छुपता नहीं छुपाने से। फ्रॉम द मूवी बेवफा से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, और आपको सुनाने वाले हैं अभिजीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी बेवफा से हमने पेश किए है इश्क छुपता नहीं छुपाने से। एक और गीत हम पेश करेंगे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से आप सुनेंगे मैंने सोच लिया

अभी आप सुन रहे थे मैंने सोच लिया फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते हम प्यार है तुम्हारे फ्रॉम द मूवी। हाँ मैंने भी प्यार किया है कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

हम यार है तुम्हारे, फ्रॉम द मूवी हाँ मैंने भी प्यार किया है। वो लड़की बहुत यार आती है, फ्रॉम द मूवी कयामत से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं, और आपको सुनाने वाले हैं कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक।

वो लड़की बहुत याद आती है। अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू के साथ में अलका याग्निक, आपको सुनाने वाले थे। भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा से आप सुनेंगे

अभी आप सुन रहे थे भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आपके प्यार में हम सवरने लगे अब का यज्ञिक आपको सुनाने वाले हैं।

के प्यार में हम सवरने लगे अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। दिल मेरा तोड़ दिया उसने पूरा क्यों मानू, फ्रॉम द मूवी कसूर से हम पेश करते हैं।

0: मैं सिमरन बोल रही हूँ। अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो।

अलका याग्निक की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी कसूर से हमने पेश किए हैं दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानो। क्रिमिनल है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।

रहे थे तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। इस बार हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवीज, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते गली में आज जान निकला। अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती नाथ का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है, तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है, भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हरी राय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी याद करते हैं।

आप बुलाएं और मैं ना आऊं ये तो हो ही नहीं सकता। शिक्र होता है जब कयामत का, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी माई लव से आप सुनेंगे द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे जिक्र होता है जब कयामत का, अद्वैती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी माइल ऑफ से हमने पेश किए हैं रुक जा ऐ हवा, लता जी आपको सुनाने वाले हैं ये सुंदर सा गीत, आप सभी के वास्ते हम पेश करते हैं। फ्रॉम द मूवी शागिर्द से आप सुनेंगे

0: अभी आप सुन रहे थे रुक जा ए हवा, हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। इंसान का जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। इंसान का जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर दिल ही साफ नहीं तो चमकते चेहरे का कोई फ़ायदा नहीं। फ्रॉम द मूवी आरसू से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं और गीत का बोल है ए नर्गिसे मस्ताना।
1: And

अभी आप सुन रहे थे एनर्जी से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है। एक बहुत सा सुंदर सॉन्ग हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और लता जी आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, ज़िंदगी सब्र करना सिखाती है, ज़िंदगी सब्र करना सिखाती है और सब्र जीना सिखाता है।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, सारा बोझ तो ख्वाहिशों का है। मैंने देखा तूने देखा फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मैंने देखा तूने देखा, लता जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हमने पेश किए हैं। कोशिश करना कि जिंदगी में वो शख्स आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ मिले, जो आपको रोज़ आईने में दिखाई देता है। कान में झुमका, चाल में झुमका। फ्रॉम द मूवी सावन भादो से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफ़ी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे कान में झुमका, जाल में ठुमका, लगे पशासी झटके। और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं ज़रा आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, फ्रॉम द मूवी झुक गया आसमां से हम पेश करते हैं।

0: कहाँ चल दिए।
1: अभी आप सुन रहे थे झुक गया आसमां से, कहाँ चल दिए, इधर तो आओ मेरे दिल को ना ठुकराओ, बोल सितमगर मान भी जाओ। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। हाँ मैंने भी प्यार किया मुकेश जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं। लोग हमारी कदर उस वक्त नहीं करते जब हम अकेले हो, बल्कि उस वक्त करते हैं जब वो अकेले हों।

फ्रॉम द मूवी बुन जो बन गए मोती, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी और सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम और आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, मंजिल इंसान की हौसले आजमाती है, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना मेरे दोस्त, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आप यहाँ आए किस लिए, किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं साथ में आशा जी के साथ।

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: आप यहाँ आए इसलिए,
2: आज आपने बुलाया इसलिए,
1: आए हैं तो काम भी बताइए।
0: ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
2: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले जरा

0: सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है। बुलाया इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
2: अभी आप सुन रहे थे आप यहाँ आए किस लिए, आशा जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। सुंजा आ ठंडी हवा, थमजा ए काली घटा आप सुनेंगे। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ लोग खुद टूट जाते हैं दूसरों की खुशी के लिए।

अभी आप सुन रहे थे आकाश मिश्रा जी की आवाज़ में दिल झूम झूम। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिल की गली, और आपको सुनाने वाले हैं सरासा हम देखे ये गीत हो जाए आप सभी के वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे दिल की गली। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं उसका बोल ये है, तेरे बिना ये दिल।

अभी आप सुन रहे थे मेरे रहनुमा, तेरे इश्क की गलियों से आप सुनेंगे सुनने वालों।

अभी आप सुन रहे थे तेरी यादों में। चलिए ये सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, दियो तेरी यादों में।

अभी आप सुन रहे थे दिल तेरी यादों में, एक सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। तूने नजरें झुकाई तो क्या हुआ।

अभी आप सुन रहे थे मुझसे खफा। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिल तेरे साथ।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी। राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस संडे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल नेक्स्ट टाइम।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जान, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आजिर बांधे। तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी राम से श्रीकाल है। जोनी नंबर वन है हमारा नाम। आज की देश विदेश की समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। तो दोस्तों हर हफ्ता की तरह आज भी आप लोग को हम सुरीनाम नाल और देश के समाचार आप लोग को हम सुनाएंगे। समाचार कभी कभी मीठे है, कभी कभी खट्टे है, और आज भी हम फेसबुक के माध्यम से लाइव है हमारी यारो। तो हम तुरंत चलते हैं, और कहाँ चलते हैं? वातरकांत सुरीनाम की ओर हमारी जनता। सुरीनाम में भैया मुसीबत एक अभी नहीं रुकता है, तो दूसरा मुसीबत आ जाता है, दूसरा अभी नहीं उपलोसद होता है तो तीसरा मुसीबत आ जाता है। तो मुसीबत के ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम हमारे देश पे बस छा ही रहती है हमारे जनता। और सबसे पहला प्रॉब्लम ये भैया, बारिश वहाँ पर थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। बारिश के मौसम बहुत ज़्यादा है, यानी कि बूढ़ा सुरीनाम देश में बहुत ज़्यादा है भैया। आदमी लोग को हम जिस सोशल मीडिया पे देखते हैं, न्यूज़ पे देखते हैं, तो आदमी लोग के हमारे जनता के घर में पानी चल गया है। लेडन देखो, वनिका देखो भैया, और परमारिबो सेल्फ इस ओंदर वाटर हील माल ब्लॉक मैन से। और जनता लोन के हम काम बोली बहुत दुख में है, मुसीबत में है, लेकिन तो पानी दोस्तों, साथे साथ पानी के साथ में वहाँ पर भैया स्टॉकिंग होता है। तो राजा अयोध्या भी आ गया है हमारा प्रोग्राम में, जुड़ गए हैं। तो राजा साहब, आपके राजा साहेब आपको हम यहाँ से बहुत दुलार और प्यार देखते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक के माध्यम से धर्मेंद्र श्री भी आ गया है। तो धर्मेंद्र, बारिश के मौसम लंगडाम पेना सुरीनाम देश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन न खाली बारिश भैया, स्टॉकिंग सुरीनाम में डेमोस्ट्रेशन के तरह भैया, स्कूल के जितना यफराव मिस्टर रहा उस सब स्टॉकिंग कर ले रहा, कारण कि उस सबके पैसा ना फरहो करत रहा था, अब पैसा मिलल है तो स्कूलिया अब शुरू करी। इधर जब स्कूल शुरू भेल है तब शुरू करी से पुलिस स्टॉकिंग मांगे करे भैया, डेमोस्ट्रेट करे मांगे हैं, स्टॉकिंग मांगे करे, ओहू सब मांगे अपन लूंस फॉर हुकिंग मांगे हैं। अब ऊ ना शुरू भैले भैया, अब यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो सुरीनाम के है अब ऊ सब मांगे हैं आक्सी करे भैया। यहाँ पर लिखा है पर्सनल सेंट्रल बैंक फॉर आक्सी ना एड ब्लाई फॉर रियाक्सी फंड मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट रियाक्सी ना दे ची सब मांगे आक्सी करे। और सेंट्रल बैंक भैया जहाँ पे हम लोग के पूरा सुरीनाम के खजांची है, वही सेंट्रल बैंक के त्रिक लूटे रहा, हुफ्द्राट लूटे रहा, सुरीनाम से पोस्पार भंग के क्रोमो लूटे रहा। तो हम बोले तरी से कभी कभी आप लोग को बता दी कि चलो के याद रहे ना भूलियो जा कि के कौची करी से हम लोग के देश में। तो वही सेंट्रल बैंक बातचीत हो रहा है राजा साहेब। तो अब सेंट्रल बैंक सुरीनाम के 5 तारीख यूनी 2020 तक के सेंट्रल बैंक के कम करतन जो है 8:30 बजे सब बैलकार आए लेगो प्लेंचे पे, और फंड बैंक के प्लेंचप आए ले और सब हुआ पे अब्बा, और बोले हैगा आन दा खफराक फॉर सोरखन
vragen en signalen van medewerkers over de herziende functiehuisje waarin hij ja raakt. Obbele het bestuur noemde uitblijven van reactie teleurstellend en zegt de ontwikkeling nou lettend te blijven volgen. तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता तो हम बोली 5 तारीख यूनी हिंदुस्तान से एमी खराची के बारे में हंड्रेड ड्रियन फेव तक यार 153 हाँ हंड्रेड ड्रियन फेव तक यार हो गया है सुरिनाम देश में बहुत बहुत यानी कि अन एक्टिविटीते है यहां देन हाग में भी एक्टिविटीते रहा हमार प्लेन पे म्यूजिक बजल है और याद भइल है हमारे जो बाब दादा पूर्व जो 5 तारीख यूनिक के कॉन्ट्रैक्ट आर्बिटर्स जो लाला रुक पे 1873 तक में सुरिनाम में गइल है तो वहां के यानी 5 तारीख यूनिक के उसको याद करते हैं 135 तक यार हो गया है तो बताओ द और खान शासी वेस एरोप द इस्ते हिंदुस्तान से इमिग्रेशन जो रहा बोले हैगा उन बेरिंग इन उन टीकर है एन uitdaging van een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de economische sociale en culturele ontwikkeling in ons land Suriname mensen door कसके काम करे के डिसिप्लिन रहा सबके दूरसेटर्स vermogen रहा तो जितना अभी हमारे औदरे है आप लोग को बाप दादा हमार तो नानी रहा मेरे ख्याल से नानी नाना भारत देश से आयल हा उसको हम नहीं जानते दोस्तों तो ये सब तो भारत देश के रहा तो बताए गए रे बाबा माई मोन्यूमेंटल लगे सब गईल है न्यू आम्स्टरडम कमवेन में सरमक्का खरोडिंगर पे गईल है निकेरी में सब भी गईल है और वहाँ पर सब जाकर और वहाँ पर हरदाह कर ले बा हम लोग के एमी खराची के बारे में इसके गीत अभी आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे तो हमारी जनता हम और आगे चलते हैं सुरिनाम के ओर हाँ तो आप लोग जानो हैं ओवा एस के बोले ओ मिनिस्टर मेलफिन बोवा बैतलांस साकर के बोले हैं का ओवा एस में जो सेक्रेटरी जनरल हम लोग के अल्बर्ट रामदेव रहा पहले फिर हैप्पी के तहत पे वो रहा मिनिस्टर फन बैतलांस साकर के उचल गए फिर ओवा एस के सेक्रेटरी से बड़कवा हुआ के भैया तो बताई गई है कि वहां पर बोले उकर बारे में अंदर सुख होवेगा फोकस भविष्यवान वक्त रखेरिंग इज द आउटकम फॉर अ मोगलक अंदरसुक अफ फॉर दैट डेफिनेटिव स्टैंडपिट वर्क नोमन द बाउ फॉर उन खाली अगोरे है कि कब ये नमिया के बारे में छानबीन होवे तो बतावे है मिनिस्टर बोले बनाद्र कर दैट नीट इन सुरिनाम इज ऑन फर्स्ट सेल एंड वाज द फेटलक वारहेट इज इन द क्वेस्टी फॉलकस हेम साले इवेंटुअल अंदरसुक मुतर ऑफ वेसन ई है रामदीन के बारे में अंदरसुक होवे ओवा एस में बताई गई है वीस एरोप द रिक्वेस्टी ओक अंडर और दिस को वो तेरे ने मिसे रेसेंसी फरकादरिंग तो हम बोले छोटा रूप में इसको हम बता दे भैया बहुत घींचा तानी असेंबली में हुए है तो लोन जाने हैं स्ट्राफ रेक्टलक जो उनसे बन मांगे हैं ओ आई एम और ओ एम पठाई से गा काने के अने दे नाम है कि हम लोग के माख है फरोरदेल करके अंडरसुक करके बारे में बेकर बारे में ऐड बराइट हम आप लोग को बताएंगे हमारे जनता की तोरिया कैसे हैं तो यहाँ भी एनडीपी का बोले है फरहाल फन हु वे सामन सुरिनाम वर्धन हिंदुस्तान से मिखराची के बोले है अनिव हुफ तो के नखफसीदनेस तो ये भी एनडीपी भी एकर बारे में बतावे है दोस्तों साथ साथ हम चलते हैं और चलते हैं मेलक ब्लास्टिंग लंद भैया हम लोग के ब्लास्टिंग बहुत ज्यादा भरे के परे है यहाँ पर नीदरलैंड में तो के बोले है ब्लास्टिंग कु भैया हाँ गाय ब्लास्टिंग कु के बारे में यहाँ पे

बिहारी है हमारी जनता। तो गीता बिहारी, आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में गीता जी। तो हमारे जनता, हम और जा आगे चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर। बैंक के बारे में तो अभी आप लोग को हम बताए थे, सेंट्रल बैंक में क्या हुआ क्या ना हुआ। तो साथ ही साथ और समाचार यहां पर है दोस्तों, जो आप लोग को हम जरूर बताएंगे क्या हुआ और क्या नहीं होता है हमारे सूरीनाम में। अब देखो भाई, यहां पर बताए गए हैं रोफ जो है, चोरी चपाटी बहुत ज्यादा होता है देश में, एकर बारे में दयाना में सब खोज कर ले हैं और बोले हैं सिपाही के घर में से, सिपाही के पुलिसी ब्यूरो में से इतना इतना चीज चोरी हो गए। और आगे इंस्पेक्टर के गए हैं ऑन द सुक करे, पीछे सिपाही के घर, सब इतना ब्यूरो के बीच में से कहानी कितना दे, यानी कि क्विक चोरी हो गए भैया। कितना क्विक चोरी हुई के देशवा में से, ये बड़ी बहुत आफत के बात है कि जोन अनमिया जहां पे सोचियो हमारे चीज से फैल के बस वही में से चोरी है, चोरी है। तो सिपाही के मीजा वर्क से भैले कि ना भैले भैया, ये तो 100% है। सिपाही यहां पे 24 घंटा रे बड़का कंटेनर में भैया, उतना ढेर क्विक चोरी हुई के एक बारे में दे आराम है सब खोज बहुत ज्यादा कर ले रहा। और यहां टोनी इसरी भी आ गया है। तो तीन लोग जो हैगा पार्लियामेंट के, ओकर लगे देयना के लगे ओएम यानी कि पीकी पठाई से ब्रीफी की बोली से तुलों बताओ कि तीन अदमिया के तुलों तू स्टेमिंग हम लोग के देवे की ऑन द सुक करी सकवा के ना। और तीन अदमिया के भैया हुफद्रात है क्लीम और हुफद्रात एक मिनिस्टर फन बहुता के तेज पे तो अभी तक फरार है। रियाद नूर मोहम्मद ओवे के राफे या पे के तेज और बुरंतो सोमो हार्ज मिनिस्टरी फन बहुता लांस साक के। तो एकर बारे में बहुत घीचा तानी भैले भैया दे नाम है और घीचा तानी यही बल वही में। और का बोले हैगा इंटरव्यू पे बताई सेगा यानी कि गया दिन बोली से बोले एनडीपी ना मांगे सखवा अंदर सुख होवे, बोले उन ना मांगे कि ओपन बार में होवे एनडीपी, बोले चोरवन के बचावे है, बोले जैसे पहले बचाया रहा कि हुफद्रात हुफद्रात भग्य है, बोले उ सब चीजों करे है। इतना क्रासी गए भैया की दया ना में गए है सब। और हम सब फॉलो कर ले भाई कि हुआ पे कैसे केस स्टेम करीसेगा देना में कि इस फरफोलक कोई होई कि ना होईगा, एकर बारे में बहुत घीचा तानी भइल है। तो एंड को कर रिजल्ट ई भइल भैया कि इस सप्त देना के नूर मोहम्मद हुफद्रात और सोमो हार्ज इंस्टार्ट फन बस्किल द किंग होई गए है। अब ओएम के माख है इस सब के अंदर सुख करे के खरोत देश अजमीरों जो दिया नाम है उस सब स्टेम करी सेगा, स्टेम करी सेगा कि स्टार्ट स्टार्ट बस्किल द किंग में सोमो हार्जो और काबुल हुफद्रात और नूर मोहम्मद के स्टार्ट फन बस्कुल लेकिन स्टेल कर सके ओएम के चाहे जाए के इस सब के अंदर सुकरी कैसे है। तो कौन ची चोरी कर ले कौन ची ना चोरी कर ले है। तो जो नेशनल असेंबली से नाम है दोंदर दाख के फोर्डरिंग फन द पीके बहंदल करी से ओम खवेसन पॉलिटिक अमतनार हैं तीनों ने मुआ जोल ले रही है सब के जाए जाए के अब अंदर सुक के एनडीपी वेदन फ्रागन खस्तेल ओवर द फॉलीडेगेट फन द दोषे। एनडीपी बोले हम ना मांगेला एकर बारे में बतिया, बोले हम मांगेला फोली दख दोषे ही हुए वार फन गया दिन। और अनमियन बोले तो के ना हुफते सब बोले तू अंदर सुख थोड़ो बाटे तू पीखे ही ना बाटे, बोले पीखे ये तो के कागज पठाइस के रमिया का मांगेला तोर अनमिक देनार में अंदर सुख करे ओमदा तू कुछ करी से तो हमार काम ना सबके फरोर दिल के हम लोग के काम है तू
toestemming de we ke PG ke OM ke rechter ke kaam he bepaal kere ke de meerderheid uiteindelijk toch opgelukt mensen, heel veel mensen zijn opgelukt. Kisagwa onderzoek hoi, niet een mooi tjit is op deze loot loot chori karker or mouch kere he bhaiya to VHP NPS BEP ABOP en A20 benadrukten juist DNA ke ki rechtbank is niet बोले कि geen rechtbank is बोले DNA बोले rechtbank ना है DNA is geen rechtbank en niet hoeft te oordelen over de schuld of onschuld. Volgens deze fractie moet de onafhankelijke rechter uiteindelijk ik erbare mee बोले कि और NDP चोरवन के खाली बचावे भैया चोरवन के खाली बचावे है तो नहीं कि एके ना करते एके ना करते एके ने कर आ चोर लोग के बचावत बचावत हम लोग के देश बर्बाद हो गए अबे वही प्लट इस सब ड्राई करे हैं तो फरप्लेख ना रहा कि सब कोई के चाहत रहा हाथ उठावे कि तेईका बाटे की ना जे ना मांगत रहा वो साल छोड़ के उके चाहत रहा चल जाए कि तह फोर्सेतर अश्विन अधीन छोड़ के साल चल गए भैया बोले हम ना बैठे कुर्सी पे एगो फोर्स वार दी मर फोर्स बोले जा तू बोर दिल कर बोले हैगा असेंबली के फर्दरिंग फॉर पीके टॉट इन स्टार्ट फ्रॉम बस्कुलकिन स्टेन फ्रॉम थ्री फॉर्मालिक पॉलिटिकल आमतनारन daarin is voldaan wel wettelijke vereisten op grond van artikel 140

एक बारे में अने, अने, जो पे हम लोग कहीं यहाँ पे अपार्ट बताए से कि अब उस सब जा सबके अंदर सुख करे इन खस्टमर फॉर्डरिंग फॉर पे ही और बताए गए है खात आउट मिनिस्टर क्लीमर हुफदरात ओपनबार वर्क नेशनल नूर मोहम्मद के और नूर मोहम्मद के बाद में बरुंतो सो महारजो के और यानी कि सबके फॉर्डरिंग फॉर PG werden op 9 maart 2026 bij DNA ingediend naar de behandeling van de verzoeken. Deze week stemde het parlement in met 3 vorderingen. Daarmee is volgens het OM voldaan van de vereisten van artikel 140 van de grondwet. Dus toen hebben we aanplukken hem. Chota roep me bataai ki sakwa kai se hai hamare janta. Hamare piare piare janta. To ee jo malai hai varun to bhaiya bahut jor छटकट कूदत रहा तो अब एहू तरी रिस्टक हुई है और बोले उल्टा पूजा ने सब कोई मेर दर है तो के बस कुल दख कर दी तो ही आप रे बोली से गा नीमा स्टार बोफन हेड फॉलक ओ ब्रुंतो नीत तो बोले है गा अब इसब अर्फकार ले के अपन साख लड़िए पेर असेंबली फोर्सेटर असेंबली ले और उसो मोहार्जो पाउल सोमा ब्रुंतो उसो मोहार्जो eist een eigen staat van beschuldiging instellen. Apreu wat betekent dat is die mag hè, oké? Want u jane akel u thoro boliga ki hamme na mag tul ke onderzoek kare. Grote deel bolisega ki सबके चाहे अंदर सुख होवे के तो अपरो टेकन कर दे इसकी हाँ चाहे अंदर सुख होवे के तो दोस्तों सूरीनाम के दुआन भैया आप देखो तमाशा कौन चक्कल भैल भाई कौन चक्कल एगो औरत के भैया एगो औरत है दुआन मेजर वर्कर भैया फर्राज भैले फ्रॉ केयर त्रिक फन फकांसी एगो औरत फकांसी से लौटल भैया कहाँ गैला लौट के तो भैया सुंदर हीरा आपको भी हम बहुत स्वागत करते हैं और सबको बधाई देते हैं हमारा हिंदुस्तानी के इमिग्रेसी के जो आज जो 5 यूनिक के होंद 3 and 5 तक यार भैल है तो आपको भी बधाई है जितने हमारा हिंदुस्तानी है रेडियो फाहुन के माध्यम से आप सबको हम बधाई देते हैं तो यहाँ भैया दुआने भैया फर्रास हो गए कि औरत गए ले फकांसी से और फकांसी से लौट के आए ले भैया ते का लाई से औरतिया सब कोई भाई हमने सूरीनाम से आयला ते का बोले मछरी लायला भाई मछरी लायला कड़ाबू लायला अब ई औरतिया गैला फकांसी से भैया एगो स्विट्जरलैंड दिस इज व्हाट अ फ्रॉ इन द स्विट्जरलैंड प्लाट्स टाइंग देसे वीक दा दुआना हाथ एर एवन ड्रग में भैया दुआना मेड वर्कर्स जो रहा बे द ग्रेंस ओवरगांग फन टाइंगन बुधवार के एगो बस्टेल बिश उज्जर उज्जर आयल है सो वेल्डन वेतन वाद द शफियर दी तरक कौन फन फकांसी फर फूर दे बोले फक कौन ची लाई से बोले द फ्राउ इन एट बेश खाफदार खोर आन एर बखोन हर बखाच ऐत तपकन शुरू करी से अपन बखाच ऐत पकर बेसुआ से भैया फेफन फेफ तक कॉफर लेके आयल है भाई फकांसी चल उटल है अब बोलिए का धनिर भैया दुआन बोले अब कौन चकल्लसी भैल है कॉफर्स क्वामन ऐद फूर्त मान ली फेफन फेफ तक कॉफर्स इन टोटल द दुआने मेड वर्क स्कैन से अलमान एंड ट्रॉफर निच हैक्स आन सब फासन डिफेक्ट पर्सनलिक स्पिलन सेक्टर वर्ल्ड फोर्सर फ्रॉम द स्विस फेडरल ब्यूरो फॉर द दुआने ते दुआने ईश्वर सलाम के बाद थे सलाम के बाद ना यस के पोल के एर वाज निक्स ऑन बसवार ते इखन तमाकन हेट इज ओवर एन अलगमेन ओक नीड फॉर बोडन मेंस तू चाहे 1000 लेक ये कॉफर ना सुन 20 मिनट वाज द सिचुएशन अफहंडल दिस सॉर्ट डिंगन होरन फॉर द डॉक्टर द रूटीन फॉर द बाकी 55 कॉफर भैया हरे दादा रे दादा कैसे ई ढोई हुई और कैसे ई लेगी हुई हमारे बयान जनता तेरी सोचो 55 कॉफर इज नीड हियर मेंस तो हम चलते हैं और आगे हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा मीठा मीठा जनता तो अब देखा जाए यहां बातचीत क्या हो रहा है बातचीत क्या हो रहा है ओएम के बारे में तो हम

आप लोग को हम यहां बताई भैया, एगो देर तक यार के आदमी गैल है बौश बरख पे। हाँ बौश बरख तो जानो भैया, ओकर नाम हम दल्ली बाटी सेल्फ मोर्त बरख। हाँ सेल्फ मोर्त बरख ओकर नाम चाहिए। ये ही देखो भैया, जैसे स्वयं बात में झड़ांग लगावे भैया, इरा जा टप से कुछ जाए कभी ना निकल के आवे बहरे। तो ऐसे को देर तक यार के आदमी गैल है भैया बौश बरख पे। तो हुआ से टेलीफोन करे और कैसे कैमरा से टेलीफोन करे है न बौश बरख में से कि अब हम जाएला कूदे, हम जाएला कूदे भैया अपन फैमिली लिट से है नेट फॉर नेम दैट फैमिली लिट नाम से पॉलिसी ओवर फोर फाल हिफ के इनफॉर्मेर और बताई गई है का रात के बांचित है वेट का बेल्फिया वीडियो का स्प्रेक तेजी से का स्प्रेक ये भैया बतावे है का हम बहुत शुभ्रक पसे बोले हम जाएला कूदे। बोले देखियो तो लोग कैसे हम कूदीला तो टिकटॉक बनावत रहा भैया लाइव यात्रा कूदे कोड ना दे से मेल के वर्ड फॉरबिडिंग फॉर ब्रोकन बोले फॉरबिडिंग व्हाट रुक गए और ओही रो से यरमिया ना भेटा ने भैया कोई के ना मिलल है सेस दिन इसर खीन कांटेक्ट मेरे खबीज में ने बीएम तो फरमूड लग इस दे से मान नतुल इन हेड वाटर ख स्प्रोंगन में मेंस हम जाय तेरी फनत हो को है स्ट्रैट के बारे में बहुत भैया आफत मचले सन्ना में जोनन में सन्ना में गाड़ी चलावे हैं आपके तो पता रास्तावा में भैया हम का बोली जैसे काउ फूतू होइगे आसफाल में काउ फूतू जैसे होइगे भैया मां काउ फूतू में तो अब्बे तो गोड़ घुसी निकल जाई इतना भारी भारी गढ़ा और बुड़ल है भाई स्लान हाउस स्ट्रैट के बीच में फनो हो है स्ट्रैट कि आदमी बड़का बड़का ओतो लेके गढ़ा में घुल जाए जो समय पे फिर यहाँ पे रहा भी ये प्रॉब्लम हुआ रहा तो ये रखेरिंग हुआ लोन क्लाख करत रहा भैया अब वो ही के रखेरिंग में इतना बड़का चकल्लस हुए हैं अब जनता उल्टे गरियावे हैं एनडीपी के रखेरिंग के तुतुलों कौन ची करे हैं तो यहाँ बताई गई इतना भारी भारी घरता खदेइट लग ऑन कपे नहों दर फाइव तक मीटर अब बोले हैगा स्लेख तुस्खान फन वेख द अफकलोपन प्रियूद अब इसे मांगे हैगा फन रूकर बहुर तो दृक्ष्ट बरीदन वीखन उतरा ओतो हुआ चले फन रूकर हिस्ट्रात में और उसे मांगे चार तारीख यूनी के चार बजे वो छः बजे लेक मांगे बंद करे टुक्का और एक टुक्का मांगे सेवन असफाल तेर करे भैया वही बात है वेर बुरुकू और पूर्व बुरुकू हम लोग निगरे में बोली न वेर बुरुकू चपटावे भैया सुंदर भाई जैसे कि कोई जब ढोल बजावे है और उंगली कट जा है तो ऊपर प्लेस्टर लगा देवे है ढोलिया दोरो बजाए कमुआ बन जा है तो घरवा जाए तो तेल लगाए के हथुआ अच्छा करे है ना और जो नदमी नाचे भैया जूता कभी फट गए तो गोड़ में झलका पड़ जा है तो उस समय पे मोटा सौको को पहर के अच्छा करे ऐसे भारी भारी गढ़ा है तो सबन चटावे भैया जैसे चिरई हगे है चारों बगल वैसे सबन आसफाल चटाई के और आदमी के आंखी में धूल डाल दे देख हम बना देली बाटी। तो ई सब बात बाकी कोई ना है कि चिजुआ खूब जोर तोड़ से फॉर ऑल टाइट ओके परमानेंट ही लमाल असफल तेर करके और हमारा ऐसा नाम के फनहू को है स्ट्रात बना देवे है तो सैफ बी से चित्रा अवतार भी आएंगे हैं तो वहां पर सैफ बी की फिल्म हमने देखा है पानी भैया डैम से ई पार से ऊ पार जा है और आदमी लोग के घर में पानी कंडाल में भी चल गए हैं आदमी लोग के वनिका से बुड़ल है आज की हालत कैसे है ये हमें मालूम ना है लेकिन काल के हाल कल के हाल तो यही था जो हमने देखा है। तो भैया एक आदमी है सीफरन ट्विन तक या रखे एक आदमी भैया हाँ यहाँ बताई गई है बुधवार के ई गैले गो रस्ता का नाम बा पीका दोस्त्रात और अनामुस्त्रात में वहाँ गैल है भैया जब हुआ गए ले पिकादू स्ट्रांत में तो बताए गए हैं वहाँ पे एक त्योता फिट स्ट्रांत है और बोले वहाँ पे दकते गए ले वैसाख है दादा फर मुडलकस के तो सामन में द अंदर खराई से तो फत्रों के इंदर एक तेम तुरतोला
तक उल भैया भैया एगो बार में तो मैं ही कहिला बार और हम तो न जाए ईश्वर नाम में स्कोटन खलोस बे बार हिल्स को फोन ने ऑफर पार्कियर टेरेन तो सुरिनाम इज अनफेलिग मेंस बार और में ना जाइयो हम में भी एक मन ये ठंडा भी रहना तो अपन घर ये मंगाइयो भैया ठंडा ठंडा पार वो बीर और ओके खूब नचस से घरे पियो बाका करियो बाका करियो वेत वेती मछरी बाका करियो और करोर करोर ही मरियो ठंडा ठंडा बीर धरियो और धरियो भैया धरियो बैठा गाना पाचे में और झक झक झक झक बजे है दन हैप्पी हिल मालखिन प्रॉब्लम बाकी अपन लोहवन ताला कर दी हो भाई वन असाई तो चोरवन भैया घरवे माई के लूटले है परसिये माई के लूटले वे है दिस ओहु चीजवा बचाई के रही है श्री नाम के हम नासिला वार है बताइला अब देखो भैया मिनिस्टर फान मिनिस्टर के हम बोली ला मिनिस्टर के बोले ला मिसी काबा फॉलोस खोसों थाई के अभी का बोले भैया सुरिनाम में सिस्टर इस्टर भैया ना है सब खोजे फरप्लीक कुंदख के तब मिसी काबा का बोले फॉलोस खोसों थाई के अब वो का करेगा हुए के आदमी लोग के अपन कोस्त पे मतलब लांटी के कोस्त पे अपलेडिंग देगा बोले ढेर बोले दुनिया भर पे खफराख फरप्लीक कुंदख तब बोले जेके हम लोग लेस देवे तो के फरप्लीक है पांच छह बरीस फर प्ले खसर नाम में काम कर ओकर बाद में मंगी बैतलान तपन जाए के काम कर सके है अंदरी मिसी काबा के प्लाने भैया इसे देश चली ना कि अपन सिस्टर के उस सबके मुँह से पकड़ ले रू मांगे उस सबके अपले डेंगुआ भर देवे पांच बरिस फर प्ले कर देसो हमका ओकर बाद में तू फ्राई बाटे जाओ बैतलान में काम करो हेड फेथ दैट इज ओन ग्रोथ फ्राक इन बैतलेस ना श्री नाम फर प्ले कुंदक के बात है भैया नीदरलैंड्स में ढेर निकले लेकिन आपको हम हिंदू स्थानी में फोड़ के दरीज बताई नहीं है कि एक कर प्लानिंग का है बोले हैगा फन वीक है फेदा से देर तक दोइशन ऐसे दी नीट क्यों बता लें उसे उतरा है ऑपलाइनिंग और तब बोले हम लोग भरब है तेज विन विस्त्राती ही ओम दत वे नीट मेर क्यों ने हेवन दत वे ही मेंशन ऑपलाइनिंग फॉर हिट बैटलान द दाग वार ऑफ मेंशन हिट डिप्लोमा करेगा क्यों से एंकलक आल इन फ्लिक्टेक स्टापन एंड वे खान तो ये बात है हमारी जनता मिसी काबा के प्लान है भैया मिसी काबा का प्लान है ना कि अपन फरप्लीक कुंड के मोह से पैसा भर और सुरगु कर कि हमारा देश में अच्छा अच्छा दतरा हुए अब देखो भैया तुम लोग जानो सुरिनाम में दुकान में के आगे वॉट्स बड़ा गरम गरम बिका है तो हाँ गरम गरम वॉट्स हुआ बिका भैया तो गरम गरम वॉट तो हम भी कीन के खाएल भैया मुर्गी के तो यहाँ बतावे है कि असा जो आदमी वॉटसोन बेचे हैगा ओहू के छुट्टी ना भैया का बोले है रोफ ओफ के बारे में तेगो वॉट्स पर कोपरा भैया पंडित पलतन तिवारी वे और चोना कीट के हुकू पे भैया सबन वॉट्सवा का नमिया दागी समझाई नहीं वॉट्स मांगत रहा कौन ची मांगत रहा फॉर नो उमर वॉट द नमान सेल फॉर यार द सामन मेट एंकल फ्रिंदर फोर अन बार फिर द तुन तुई क्रिमिनल ओप ब्रोफिस ते प्लास फर्स्कीनन और दोनों उतरल है और बोले द बकेंस्ट्रात दैट बकेंस्ट्रात आज पिल्लू कोनो पिल्लू भैया बकेंथ है पिल्लू के नाम से और कोनो के पिल्लू नाम है फॉर फॉल्क साल दे प्रोसेलिंग पिस्तौल और दागी से भैया इस सब के फरियारी दुकान के आगे मनावत रहा सोना के केती घींच के लेके चल गए हैं द वॉट फॉर कूपर फॉर सेट से खीफ वारना एगो वॉट स्टिलिंग भैल है तेज कॉन्फ्रेंकासी फिर दे द रूफ फॉर खरेक्ट ऑफ है ना है स्कॉट रेंडे द फरदाख्त तरीक ना द ब्रोंफीज और एक केती लेके भाग गए बोले अब जाओ फिर वॉट्स टू बेचो भैया वॉट्स वॉट्स करिए और बोले द खवन द वॉट्स फॉर कूपर क्रिक डायरेक्ट सिपाही आई है डायरेक्ट ऑन कीफिंग में सामान से जैसे अख्तरफॉल्किंग द ब्रोंसिस वार ऑफ द फरदाख्ते वाने कफ्लिक वेर लाटर ऑन बहिर आन कत्रोफन मोंप्लेसिर में मिलल है और तू जाने भैया इस सब चोरवन जंगल बारा जोर कूदे है भाई हम रोके ती सब निकेरी में कपड़ी घींची से
कफड़ी के लुंडन छोट छोट घींच के और भगल है। जब दौरैली भैया तू जंगल में घुस गए, हमका जंगल में जाबे भैया हीरा ना ना ना ना ना ना ले जाओ खेती हम मरे ना जा भैया, जिंदगानी रही तो फिन खेती की ना जाई माँ हम ना जा भी छूरी भकौल के। तो रांच राम लगन भी आ गया है। तो भैया रांच आपको भी हम अपने प्रोग्राम में स्वागत स्वागत करते हैं। तो हमारी जनता और आगे को अपना

1863 में सुरीनाम देश में गुलामी का अंत हो गया रहा। सब अफ्रीकन गुलाम उबरी से आजाद हो गया रहा। ओकर कारण हॉलैंड के सरकार के खेतवन में किसान और कारखानों में कमकर्ता के जरूरी पड़ गए। उस समय भारत देश में अंग्रेज के राज रहा और अंग्रेजी सरकार हॉलैंड के इजाजत दे भारत में मजदूर के खोजे के खातिर। ऐसे भइल कि 1873 में हिंदुस्तानी के प्रवासी शुरू हुए। भारत देश में झूठ झूठ बात सुनाई के बहकाई के आंखी में धूल झोंक के सुरीनाम में बोलल गए, चल सुरीनाम देश, उधर सब कुछ मिले। कलकत्ता में पानी के जहाज में बैठाइस और यात्रा शुरू हुई।

श्री राम देश चले, वहां पर 5 बरिस कोनो जमींदार के खातिन खेती बारी करती, तब ढेर पैसा मिलत। और 5 बरिस बाद हमें मुफ्त में एक खेत मिलत। अरे खेतवा तो मिलल, बाकी बहुत

सरनाम अपन ने सोई गए सरनाम अभी यहाँ आई के अब इधर ही रहबे जिंदगी अभी यहाँ गुजरी।

0: तो दोस्तों ये हमारे उस्तादों के उस्ताद मोहम्मद शरीफ इसहाक थे जो आज दुनिया में नहीं है लेकिन अपना आवाज़ हम सबको दे कर गया है। बहुत महान थे दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तो जितने लोग हैं यानी कि DFF तैयार हुआ है हमारा इमिग्रेसी के, आप सबको हमारी ओर से, हमारे समाज की ओर से, रेडियो फाउन के तमाम कोलीखा डायरेक्सी लीडर की ओर से आप सबको बहुत बहुत बहुत बहुत बधाई है। प्रताप अवतार भी आ गया है, लीडिंग चीफ आसिफ भैया बेटा सनही भी आ गया है। आपको तहे दिल से प्यार देते हैं और आपको हम स्वागत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर और आगे को चलते हैं हमारी जनता। तो बातचीत ये है हो रहा है सूरीनाम में, आप लोग को भी बताए थे कि क्वेक जो क्वेक है सूरीनाम में, क्वेक के बात हम करते हैं। सूरीनाम में क्वेक जो है चोरी भय ला भैया, अब एक बारे में आप लोग को तो हम और ठीक से बताएंगे। तक जो कॉर्प शेफ मेल्फिन पीना से जोगी जोगी महेंद्र जोगी यानी कि दयाना मेकर बारे में जो मिनिस्टर फॉर यूटिशियन पॉलिसी के हनीश मरोरस से सवाल करी से कि कैसे इतना ढेर क्वेक चोरी हो सके है। एगो कंटेनर में जोन पॉलिसी ब्यूरो के परासी में धरल है, कैसे चोरी हो सके है तेकर बारे में एबे जोंस अब ओम चटकल के कहे फरकवा तो स्टेल। अरे भैया तो बाटे देना में एगो लड़का भी फ्रॉक स्टेल कर सके है कि कैसे चीज हुआ चोरी हुई सके थे, अब एक बारे में कॉर्पशेफ मेल्फिन पिनास जो है वुर्स दाखद्री यूनियन के गैल परसोलक ऑन सुख करे बसुख खबर अन पॉलिसी खैर फ्लाइट में वार्तवेई कफूल साख सेंट्रल स्टोंडन ऑन फ्रेमिंग फन क्विक आउट एन कंटेनर फन अफदेनी फ्रॉड एंड ऑन ट्रेमिंग सेन फन डेनी फिला पार्क। तो लोग जानो डेनी फिला पार्क में हुआ पे एगो पार्क है भैया, और जाए के पोकलेन मुंगरा पार्क और फिला पार्क में एगो मशीन है लेके हुआ आदमी लोग के घर के तरह तुरान है भैया, और जो पोकलेनवा गए लोग के संगे बड़का बड़का बफेले है आदमी जर जबर आका कानी से इतने फिर तक बोले कौन जी भैया जबर जबर बंदूक लेके गए हैं कि वो सबके कोई कुछ ना करे। और घर में अब सब इन बूदल है, सब इन बूदल है भैया, तोड़ तार के घर प्लाटा कर दी। इसे जनता चिल्ला है ओकर घर जहाँ पे उसे 20-25 बरिस रहे और गई है सब घर तुराई गए हैं। तो एक बारे में बहुत हिंचा तानी भय लेकर बारे में देसी गई है और यानी कि पॉलिटिक भी ओमा बमुई करी से चीवा बंद कर दी से स्टॉप करी से। और अब सब पूछे है हनीश मोरर के जोन हुआ पोता जबर जबर अनमियन गला बड़का बड़का बंदूकियन लेकिन उस सब के रहा कि स्कोतु सूरीनाम के ना अनपक्र में सो वापन लेके हुआ गई लेगा और उतरा घर तुराने ब्लैक भैल है कि जघैन जितरा हैगा तुई केर बिचार है भैया दुई डाई बिकान है जो नरमियन उना पैसा लांटी जघैन नरमियन पैसा भर भर एरो भर भर जघैन कीने रहा अपन कफलवा फीला पार्क के और मुंगरा के मुंगरा अने कॉम्प्लेक्स के तब वो सबके घर तुराई गए। एक बारे में अब बहुत घींचा तानी है तो अब यही स्कोतुआ मेल्फिन पीना स्कॉरब शेफ दुई चीज गए खैर फ्लाइट में पूछे कि ये चीज कैसे हो सके है ऑनर सुख गए करे क्वेकवा कैसे चोरी भैल है। तो बोले हैगा इन्फॉर्मेर बेर फ्रॉड ऑफर फॉर ड्वेनिंग फन हु फील है क्विक कॉरब शेफ नेम द साक hoog op en heeft direct aanvullende veiligheidsregeling laten treffen. Aur jitra cheez abhi container mein raha sab wahan se froisi karwa di se. Ab froisi to bhai le bhaiya kyu kahan gaye le froisi ke Suriname ke sipahi vishwas na hai bhaiya pratap avtar vishwas na bhaiya bole hain jk moos ke dhariyo aur kaise bole bilar ke dhariyo na bhaiya heera doot rakhawe to ka hoga. To hamara fatingan ramraj bhi aa gaya hai aapko bahut pyar se swagat karte hain bhaiya fatingan तब धरियो बिलार के दूत रखा हुए के तो कैसे रख के कैसे वो रखाएगा। तो कॉरप शेफ अब गए ऑन सुख करे कि चीज कैसे है और इंस्पेक्टर बेन ऑफ द फ्रॉड किंग पिनास ओक ना आनखिफ्त दींस और बोले है मुंगरा प्रोजेक्ट के बारे में एक भी गए अंदर सुकरे डेनिस विला पार्क सॉर्ट ऑफ फॉर फील फ्रागन अंदर मेर ओवर द रोल फॉर द पुलिसी टेडिस द ऑन्ट्रेमिंग नर द आनलाइडिंग दार फॉर इस मिडल अन अंदर सुक स्टार्ट दोनों गस्पेशलाइजेड इनहेड फॉर द बस्टरेडिंग फॉर सो आर्किमिनालिटी इन के बारे में तो फील पार्क मुरा तो लो कितना कितना घर आदमी लोग के इन बुदल भैया जेमा इरको लगल ऐश काशी है घर में अब सब इन बुदल है कितना आदमी है का जोन के हुआ फकांसी है इस बनाए रहा अपन घर बनाए हुए रहा और ग्वाइटो लैंड में काम करत रहा जाए जाए धीरे धीरे अपन घर बनावत रहा कितना आदमी जो रहत रहा भैया सबके घर टूट गए है तो बहुत दुख के बात है गा सूरीनाम देश के बातचीत हमारे जनता। अब देखो यहाँ पे हम बोली तरी जाई तो एनडीपी का बोले है बोले फिना शेल मोदर पुल फॉर थिंग यार लॉस ये नीट इन फेफ यार ऑफ हा और बोले मोदर पुल के बोले चहटान जो ची है बोले जो धसान चहटान है बोले है दस बरिस के बोले पांच बरिस में थोरो बोले ओके अपलॉस कर पावे जब से देखो तो चहटियान है भैया फतिंगन कैया सफा भइल है कैया सफा भइल है एनडीपी कमोवेन के कोऑर्डिनेटर शांतल सामुएल द रेख दैट द मदर पोल नीट इन ए स्टेप कैन फॉरंडर इन द ड्रिंक वाटर दिर वर्गलाइकिंग एक्टर ओक फॉर टूपासिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन रेगेरिंग सन टोकन 2020 आंट्रोप अ फाइनेंशियल मदर पोल द टिल्ट gedurende 10 jaar is ontstaan los je niet binnen in 5 jaar bovendien werden de eerste twee regeringsjaren overschaduwd door de wettelijke COVID-19-pandemie, die economie en overal ter wille zwaar trof. De दस बरिस या के चाहटा में लौटत रहा भैया तो अपन चाहटा जोन में तू लौटत है अब जाओ अपरो एक गिलास में धोइयो या परमानेंट में नहो ये सफा तो ना हुई भैया आधा सफा जो होवे है ना अरे तो फिर से वही में लबड़ा जाए कौन आवे है जो समय पे फरकीसेंग तय चेगा तो चाहटवा लभेड़ल करी कि सबके हम का बोले खूब खवाई पियाई कि आओ हम में तू लोन करके फिन बैठाओ फिन बैठाओ और वही में काम दिए दुनिया भर के आदमी लोग के और देशवा तब चाहटा में हुए तो जो अदमिया ले देशवा तब बोली हेगा देखो कितना हानि करके देश हम कैसे देशवा संहारी देते यार इन यार इन यार ऐ थे युवा भैया सन नाम के रवाज है युवा तो कैसे भला देशवा हमार हमारे देशवा कैसे सुधरी भैया कैसे सुधरीगा सुधरे वाला ना है हमारे जनता। तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों जॉनी के कहना सफा बात है अच्छा लगी तो ले लियो खराब लगी तो हमारे। अब देखो मिनिस्टर भैया एल्फे के नूर सालीम के बारे में यो ही नूर सालीम है भैया फतिंगन जोन समय पे एनडीपी के समय पे ई परामारी बहु के देशे रहा भैया आप लोग जानो हैगा एक रात में जो तेकन निकल रहा कगचुआ तुम जानो ना किल के वहां पे जगहियन बटाई गया रात भर में वही नूरसालीम है भैया वही नूरसालीम है। अब एनडीपी जीतल है तो एक सबन मिनिस्टर बनाई से एल्फे के मिनिस्टर बनाई से भैया अभी एल्फे के मिनिस्टर तो बन गए हैं मैं एल्फे के मिनिस्टर तो बन गए हैं एक कर बेटवा कौन चकलस करी से। अब देखो ओकर बात हम आपको बताई है ओके नूरसालीम माइक नूरसालीम हैगा मिनिस्टर फॉर लैंड बाउ फीतिल एंड फिशरी एलफीफे के एकर 20 बरिस के बेटवा का करी से मुन्नराइन भी आ गया है आपको हम स्वागत करते हैं। तो ये 20 बरिस के लौंडा का करी से भैया और एक के ये अपन बाप के मतलब लांटी के ओतो चलावत रहा भाई हाँ और ये लांटी के ओतो चला उतरा बोले है तेबे द्वे मानेड वर्दन और बोले है कि को 15 यार के बरो में को लंडा 15 बरिस के ओके समन रूफ करी नूरसालीम हुआ के बेटा हुआ 20 बरिस युवा वाला रूफ करी से भाई यहाँ बताए गए रूफ करी से बपुआ के कौन ची के कमती है के बेटवा जा है 15 बरिस के लंडा के रूफ करे बाप है मिनिस्टर, और लड़का ने देखो क्या करे भैया, बाप चाहे अच्छा है चाहे खराब है, मन लड़कन बाप माई के नाम गिराए दे है। आप लोग देखो जानो संतोखी के बेटुआ भी अपन बाप के कितना बड़का बड़का बात बोली से। उधर बौता के बेटुआ बोरंतो आज तक बन है, और वो बेटुआ और करेगा और है वो बन रहा भैया, वो निकल है तो लड़कन। अब उधर एगो और भैया गाय चोराए रख के गया एथनल के बेटुआ, तो बड़ा बड़ा पोसीसी वाला आदमी लोग के लड़कन का नाम गिराई देवे। ऐसे यहाँ पे नूर सलीम के बेटुआ एगो 15 बरिस के लौंडा के रूफ करी से बरूफ करी से एकर बारे में अनखिफ्त भइल भैया। पुलिसी मांगत इधर बकेंदर बेहद फरदख्त न ओफले सिद बेहद ओएम दस साख वेर फॉर फोरखल फोरखल एक ऐसी लगे। और बताई गई है यहाँ पर बताई गई है कि ये सब लंदन जो नहीं गया दिन स्फूर्त से ऊपर से भैया इधर पुलिस अंडरसुक ब्लैक दर फरदाख्त से इन दिन स्फूर्त फॉर मिनिस्टर फॉर एलपीपी फॉर प्लाट्सन तू से ने मिंदर यार के ब्रॉम फिसर तेगन क्वामन volgens de aangifte zou de slachtoffer vervolgens tegen zijn wil zijn meegenomen als opperzoeken mishandel wie kan is ja to lanti auto dewe hega minister lukke ki okar betwa jao chalao aur dam pe payo koi ke roof kar liyo ee hamara desh hai bhai ee hamara desh hai janta hua blasting bhare hai auto hua ke janta ke blasting se auto hua ki na hai aur minister apan betwa ke वे बोले जाओ रोफ करो। ये भैया कैसे देशवा चली, और हमारा मीडिया जो सूरीनाम के है इस फराख ना जाने स्टेल करे ओमदान द मिस्ट मीडिया हीफ नामलक दान पॉलिटिक फोर देल तो उना जाएगा पूछे भैया कि और एक बहन ही एक अपील मालखिन फोर देल में निमान तो सच्चाई अन मीडिया मुत ऑलवेज फ्री कुने प्राते vrij kunnen praten, jaysay, hey, je moet niemand voortrekken. Jab Noor Mohammed kem interview kare jo barmasi kari se chori kari se to oke chahi jahal me jai ke so is it o koffer die ging na chahi kare ke jab hoofdraad लूट के गईल है तो ओके चाहे जहल में जाए के ना ओकर ऊपर तलो हाथ दर के ओमदा तू एंड ही पेयर है तो ओके ना माखे फॉर द रेक्टर जाए के सो खान अल्लाह ने दौर खान। अबे को छोटा आदमी घरे चियो पर दे दे खोई सके धोई सके आसान भले के बड़का बड़का आदमी लोन बचावे है। इंग्रिद बाउटर्स बोले हुफदरार के ना चाहे फॉर देल करेंगे, एगो मलाई नहीं बोले है अधीन जोन फोर्स से तर है आसान भले ये छोड़ के चल गए हैगा हम लोग के रेक्सटाट कहां है सूरीनाम में दोस्तों। अतिस बलखलक फॉर ओंस लैंड सूरीनाम दा गात तो हम एंड दैट इज गोइंग द वारहेड हम किसी को फोरट्रैक न करेला तो जनता हम जाई भैया अब जइयो सूरीनाम देश में तो हुआ पे भैया हॉलैंड के कुत्ता पइयो हां तकुतवा जोन है भैया बारा जबर नकुना है ओके ओकर नकुना किलोमीटर से सूहे है जोर मछली ना सूहे कड़ाबू आबू ना सूहे खाली कोका सूने भैया और कोका जो सूही तो हुआ टप्प से बढ़ जाई कुत्ता ना काटी कुछ ना और ओकर जोन का बोले है बखले इधर है बास से ऊपर सीन जान जाए बोली कम में कॉफर खोल के और कोकाइन तोर पाई जाए तो नीदरलैंड के अम्बासाद जोन बा सूरीनाम में कुतवा के देश से ऑफिशियल ड्रग्स पीसो तो जितना आदमी ड्रग्स फ्रिक्स लेके आवे भैया पहले तोर स्वागत करी हॉलैंड के कुत्ता तो ओकर बारे में कॉल लेके मारा शीशे ही लगे जइयो ऐसे बतिया है एट मिस ऑफ फन प्रोजेक्ट इज दैट ही मी द बास्ट basis wordt opgelegd voor de nieuwe hondenbrigade. Ke bare mein dosto Suriname des ke bhaiya char mila pakdane yes ke phol pe paisa vetwas karta bhaiya ha aur namua hum sulli bati कौन कौन है ओ मा बाकी जब लेग मीडिया पे ना ही हम नमुआ ना बताबे ना अति स्त्रीमेंस अति खेम जे तो के पकड़ी से वेतवा सके चीज और वो बतावे है कि इतना सना उच्चार दुगो और दुगो मरत हैगा सुरीनाम के यहाँ के पोल पे उकले के बहुत ढेर पैसा पाए सो के दुबई में मिलियनन के घर रहा मिलियनन के साकर बोले अंदर नीमर है सुरीनाम के और वो के पकड़ के सिपाही यहाँ बंद करी से का फोन वेतवा से पैसा के बारे में लेकिन नाम ना लिखल तो हम ना बतावे उन दांग हम नमून सुन चुकली के है मदा खा एक निश्चय ओमदा तनी बकेंट इज एक वेल सेल्फ नीट इन द प्रॉब्लम एंड को मोमेंट्स तो ऐसे बात है और जो क्विकवारा भैया फेफ ऑन द सीफन 30 किलो क्विकवा चोरी भैले कंटेनर कंटेनर में से भैया कंटेनर में से चोरी भैले अरे भैया तू एन तक किलो हां 280 किलो उजर का मिलल सी तागोरी चरण गजरी हां आपको स्वागत करते हैं तो 280 किलो भैया सीफन तक ब्लॉक सेफन तक ब्लॉक में पैर्स कर भैया तरीकी कर भैया दबाए धरे रहा कोका इन 80 किलो भाई दो पिस्तौल मिलल है सुरीनाम में बिलल है जहां पे सिपाही अंडर सुक करता होम पर स्ट्रात में बेड अंडर सुक इन दे फुरते एक वर्दन मिर्दन ब्लॉक में कोकाइन और दो वापन मिलल हैगा ड्रग्स फंग इन बेड फुरते uiteindelijk uitkomt op meer dan 80 kilo. Het onderzoek naar de herkomst van de drugs, de wapens en wat apps, wat ja, ik heb ja, kwek, chori hoi ge, ik ook een waka hoi. हम कोई के बस क्यों लख न करी लामा दैट इज हाउ द वारहिट मींस द फॉरट्राउट है द ऑफ द पॉलिसी फॉर सुरीनाम सुरीनाम दी राख टेलकस वेग भैया दी राख टेलकस वेग ik ga proberen een keertje toch meneer Hanis Manoret aan te bellen zodat hij namelijk beter kan uitleggen wat gebeurt het ohi jab aila bhaiya net baithal raha to ohi Hanis Manoret bole hega mo rek kon te kyu bole hum rek karke to ke pakda bhai और बोले नौ तेस में तो जोगी बोले नौ तेस में बोले स्कूतून तो कह तेस करे पुलिसी ब्रो में से क्लोइस में से पैसा चल जाए ई चल जाए यू चल जाए द्री होंद सो फील अन किलो क्विक चल 537 किलो क्विक चल गए है तो बोले कैसे एकर बारे में है तो ये बात 280 किलो कोकेन भैया पकड़ान है हमारे जनता ऐसे बतिया है तो और आगे हर काम के लिए हर अटफर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेर इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: अद्वकात कांतोर आनंद राम सूत वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis, dat zegt de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren, maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden! Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

विरासत में सुरीनाम देश में गुलामी का अंत हो गया रहा। सब अफ्रीकन गुलाम उबरी से आजाद हो गया रहा। ओकर कारण हॉलैंड के सरकार के खेतवन में किसान और कारखानों में कमकर्ता के जरूरी पड़ गए। उस समय भारत देश में अंग्रेज के राज रहा और अंग्रेजी सरकार हॉलैंड के इजाजत दे भारत में मजदूर के खोजे के खातिर। ऐसे भइल कि 1873 में हिंदुस्तानी के प्रवासी सुन भारत देश में झूठ झूठ बात सुनाई के बहकाई के आँखी में धूल झोंक के सुरीनाम में बोलल गए, चल श्रीराम देश उधर सब कुछ मिले, कलकत्ता में पानी के जहाज में बैठाइस और यात्रा शुरू।

दिन श्रीराम देश चले वहां पर 5 बरिस कोनो जमींदार के खरतीन खेती बारी करती तब ढेर पैसा मिलत और 5 बरिस बाद हमें मुफ्त में एक खेत मिलत। अरे खेतवा तो मिलल।

सरनाम अपने सोइए सरनाम। अभी यहाँ आई के पहुँच ली, अब इधर ही रहबे, जिंदगी अभी यहाँ गुजरी, घर द्वार बाल बच्चन, अब यही हमार देश सरनाम हमार।

मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे साथियों, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ हमारे सूरीनाम देश का एक महान गायक और मेरे ख्याल से एक अति सुंदर आवाज का मालिक, उस्तादों का उस्ताद, इंटरनेशनल कलाकार, हमारे सूरीनाम देश का द वन एंड ओनली मैस्ट्रो रॉबी उदितराम जी के ये कुछ लाइव सॉन्ग्स लगा है जो मैं आप सभी को साप्ताहिक सुनाने वाला हूँ। मिलके सुनते हैं मैस्ट्रो रॉबी उदितराम जी।

बात है, वाह वाह, महान गायक, जबरदस्त गायक, हमारे सुरिनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार उस्तादों का उस्ताद रॉबी उदितराम जी। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को हॉलैंड देश का द किंग ऑफ बैठक गाना। कुछ सालों पहले ये नौजवान कलाकार को ये टाइटल हमारे यहाँ के संगीतकारों ने दिया है, द वन एंड ओनली संदीप बदलू जी, अब ना हो ये जवान।

Shabash, shabash, shabash, the king of bite, Ghana from Holland, Ustad ook al staat, Sandeep Badlu, ke beautiful awas me, ye ati sundar bayana, aap srotaon ne shunaj ke sazin, program me jo aap srotaon ke samme live broadcast ho raha hai, then how share se. अगला बयान एक और महान जबरदस्त गायक फ्रॉम द 70s 80s उस्तादों का उस्ताद देसी रघु सिंह सुनाते हैं मजेदार सॉन्ग है भैया तेरी पतली कमरिया क्या बात है एंजॉय

गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडिस का फ्रॉम द 70s 80s उस्तादों का उस्ताद द ग्रेट देसी रघु सिंह जी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है हमारे प्रिय श्रोताओं जो तोर से आप सरनामी संगीत सुन रहे हैं। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक फ्रॉम द 70s 80s मैस्ट्रो ध्रुव ननकू जी सुनाते हैं पतर पतर

was Jabberjess Gayak from the 70s, 80s. उस्ताद ध्रुव ननकू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने श्रवण किए। अगला बयान द चटनी क्वीन एंड बैठक गाना क्वीन फ्रॉम सुरीनाम, जबरदस्त गाने वाली मोतीमाला भोला सिंह, और वो सुनाती है नई झुलनी का।

शाबाश शाबाश शाबाश जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का डे आर 70-80 उस्ताद टी सनातन जी फ्रॉम निकेरी। एक और मशहूर गाने वाली हमारे सुरीनाम देश का डे आर 70-80 चंद्रवती कन्हाई जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे कुछ बुढ़ा और कुछ मेहररुवन के बारे में बुढ़ा के।

वाह वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुना ये आप सभी को। मशहूर गाने वाली सूरीनाम देश के चंद्रवती कंधार 87-80। जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का, ओक खबूर इन हेत डिस्ट्रिक्ट निकेरी, उस्ताद का उस्ताद और बैठक गाना का महा महा गुरु आचार्य श्री सत्यानंद रेखा जी, और वो सुनाते हैं अपने ही खबूरत स्तत निकेरी के बाजार के बारे में।

महान गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडीज का उस्तादों का उस्ताद और बैठक गाना का महागुरु आचार्य श्री सत्यानंत रेखा जी के ब्यूटीफुल मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। तुम्हारे पिपरी श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।

स्टनी रेडियो का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर अनतिलक उक्त बलैस्त्रफिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत, तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक और खानी साथ और हो इन्फोनमेंट और साथ और, या तो और गामान हो सकते हैं और गावुमन भी हो सकते हैं, जो भी आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में ज़रूर कॉमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ज़रूर ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो। किफ़ायत सस्ते दाम सिर्फ इस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है और मात पर हम लोग बनाकर बंधु, जितने बार आप चाहेंगे उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफ़ायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ यारों कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें टाइडेंस कंटोर उर फन मांडाग टोट फ्रेडाग फन 9-5 ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्टूडियो का तार का नंबर 070-362-2077, या तो दफ्तर कतार का नंबर 070-362-2047 पर आप तार करें। जो भी रेडियो का काम हो, देन कैन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना हमारे प्रिय सुनने वालों, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप है तो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो भी रहेगा। पेंटिनो खेलित फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाएं। सभी जानकारी इसके बारे में बेल टेरेंस कंतोर इरफान मांडाग टोट फ्रेडाग अब द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स 070-365-2047 कांतोर पर फन 9-5, या तो आप तार करें अब 070-362-2077 स्टूडियो का तार का नंबर है। द्वारा के मुताबिक एक ही दम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के और हमारे प्रिय श्रोताओं, और कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक आप सुनेंगे। मशहूर गाने वाला हमारे हॉलैंड देश का, जो कुछ दिन हुए हैं हम लोगों को छोड़ के ऊपर वाले के पास चले गए हैं, मैस्ट्रो शहीद वाहिद हुसैन के ब्यूटीफुल आवाज में मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले।

0: सुंदर बयान मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले बाय मैस्ट्रो शहीद वाहिद हुसैन। अगला बयान एक और महान गायक हमारे हॉलैंडिस का, बोर्न इन पाकिस्तान और कितने शोस दिए वो हमारे सुरिनाम देश में कि रोजाना लोग रेडियो पे इनके नगमे चलाते रहते हैं। है सेल पॉपुलर और नॉक स्टेट्स इन सुरिनाम हाउटमैन हैम दागलिक्स इन लीव मिट सेम प्रखतग स्टेम वर्सुक आन कॉलिक स्वान मै दी दैट ओक मोगे डून। इक ड्राइ फाक नेमर्स फन हैम वंट मेरे तो ये जिगरी दोस्त था, दिल के करीब भी था। नरीम खान सुन सुन पुम पुम आओ नाचो एन अंदर स्टाइल फन देस माएस्ट्रो
1: हिंदुस्तान आओ नाचो और झूमो तू।

क्या बात है, वाह वाह, शाबाश शाबाश, महान गायक हमारे हॉलैंडिस का द ग्रेट नदीम खान फ्रॉम पाकिस्तान, और जो अभी तक बहुत ही पॉपुलर है हमारे सूरीनाम देश में। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं, एक और मशहूर गायक हमारे हॉलैंडिस का जन्म तो हुआ है भारत देश में, शेखर कुमार जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर चटनी आप सुनेंगे कि प्रीतम प्यारे तू कहां बसत हो, अपसाइन शेखर कुमार स्टाइल।

वश मशहूर गायक हमारे ऑल इंडीज का दिग्गज शेखर कुमार जी। सुनने को जा रहे एक और मशहूर गायक हॉलैंडिस का, आल्सो बोर्न इन पाकिस्तान और कितने सालों से गा रहा है मेरे ख्याल से फनफ 1983 तक हेडन मैस्ट्रो बॉबी जेकब जिंदगी का सफर।

अति सुंदर दिल को छू लिया ये नगमा जो मैस्टर बॉब याकब जी ने हम लोगों को सुनाया, क्या गला है और क्या गाता है। अगला बयान सुनाकर जा रहे हैं सुरिनाम देश का मशहूर गाने वाले दो निशा मदारन और किंग कॉलोनी मिलके सुनाते हैं आप सभी को खतरनाक यानी डेंजरस।

0: altijd rustiger na het huilen. Dat klopt hoor. Mark Twain, Amerikaans schrijver en ook PS van Samuel Longhorn Clemens, 1835-1910. Mark Twain, ik ga hij, wanneer de mensen ons niet achten, zijn we zwaar beledigd. Maar niet in zijn hart heeft, maar diep in zijn hart heeft geen enkel mens erg veel achting voor zichzelf. En dat was tevens de laatste van vandaag. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over de mensheid gingen. Ja, toe. श्रोताओं ने सुना कुछ उदाहरण कुछ कहावतें जो मनुष्य इंसानियत के बारे में जाता है ये आशा उम्मीद लेकर मैं इन बातों को आप सभी को सुनाया कि इन बातों से कुछ ना कुछ डर तो ज़रूर हम लोग सीखेंगे ना तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं यारो एक अति सुंदर मज़ेदार सॉन्ग आप सुनेंगे ये ओरिजिनल तो लिखा था बड़का भैया श्री राम रमेश्वर जी ने अब सुनाने को जा रहे हैं अपने ही अंदाज में मशहूर गायक हमारे सूरीनाम देश का प्रशांत राम जतन विद द जूनियर्स टोंग टोंग ब्राफू
1: आला बाना पूरी तेनु फिनी गायुस कोना मी

0: نتیجه
1: एकदम शाबाश शाबाश शाबाश मशहूर गायक हमारे सुरीनाम देश का मैस्ट्रो प्रशांत राम जतन जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना. म्यूजिक बाय द जूनियर्स फ्रॉम सुरीनाम. मशहूर गाने वाली हमारे हॉलैंड देश का रोटरडैम शहर का द नाइटिंगेल संगीता भगेलू जी के ब्यूटीफुल सॉन्ग हंसी बन गए.

Fuzong, Hollandaise Rotterdam शहर का The Nightingale, संगीता भगेलू जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान आप सुनेंगे सुरेन भगवान दीन के आवाज में, यानी मेरा ही आवाज में, दरा हेमंत कुमार जी का ये कॉफरेट सॉन्ग फूलों के हार, म्यूजिक बाय माएस्ट्रो ज्वाला।

का प्यार सुरेन भगवान दीन यानी मेरे ही आवाज में ये कॉफरेट सॉन्ग आप सुना। म्यूजिक कंपोज एंड अरेंज बाय माएस्ट्रो ज्वाला। तुम्हारे विप्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, आप ही का तो ये आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, आप भी जाइए, कुछ खाइए, कुछ पीजिए और साथ ही साथ प्रोग्राम को जरूर सुनते रहना, मजे लेते रहना। आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत यार।

गालो मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ दो महान गायक के मधुर आवाजों के साथ, म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर एंड सिंगर द ग्रेट भूपेन हजारिका के मधुर आवाज में साथ दे रहा है एक और महान गायक द ग्रेट हरिहरन जी, तुम ही तुम, कंपोज बाय द मैस्ट्रो हिमसेल्फ द ग्रेट भूपेन हजारिका।

0: सुंदर बयान श्रोताओं के शो में पेश किया गया डोर डॉक्टर भूपेन हजारिका और हरिहरन जी के आवाजों में कंपोज बाय मैस्ट्रो भूपेन हजारिका। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो गीत और गजल संगीत कारो का दास्ता नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। महान संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर सिंगर द ग्रेट भूपेन हजारिका जी के बनाए हुए कुछ धुने आप सुनेंगे। हाँ आवारा हूँ, एक अति सुंदर बयान है, गजल है, खसरीफर द ग्रोट डिक्टर फनाइट इंडिया मास्टर गुलजार जी कंपोज ऑन गसंग डोर डॉक्टर भूपेन हजारिका।
1: आमी एक जाजाबर, आमी एक जाजाबर,
2: आमी एक जाजाबर,
1: पृथ्वी आमा
2: बहुत मशहूर नगमा है भूपेन दा का।
1: भूले छी निजेर घर, आमी एक
2: जाजाबर, जाजाबर का सही तर्जुमा मुसाफिर भी नहीं, बंजारा भी नहीं, आवारा भी नहीं, लेकिन सबसे करीब आवारा है। बिना मंजिल के घूमते रहना, चलते रहना, बहते रहना इस जमीन पर, इस पूरी जमीन पर जिसे वो अपना घर समझता है या मंजिल समझता है। और घर जो कहीं नहीं है इसे क्या कहेंगे, आवारा कहीं का या आवारा कहीं का नहीं।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग, हाँ आवारा हूँ। और सुनाया आप सभी को महान फनकार हमारे भारत देश का डॉक्टर भूपेन हजारिका।

अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है जो खास करके ये महान संगीतकार ने कंपोज किया है और लिखा है, महान लेखक द ग्रेट गुलजार जी, मौला ओ मौला, फ्रॉम द मूवी रुदाली।

Best audio song from the movie Rudali. महान संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका का कंपोज और गाया हुआ अति सुंदर बयान, रिटन बाय द ग्रेट पोएट मैस्ट्रो गुलजार। पाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है यारो संगीतकारों का दास्तान नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, गीत और गजल ओट इज गोल्ड। अगला बयान एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है कंपोज बाय डॉक्टर भूपेन हजारिका और साथ दिया है उसको इस नगमा को सजाने में महान तबला प्लेयर उस्ताद साकिर हुसैन जी। आवाज है देवकी पंडित जी का, बादल चांदनी बरसाए।

बादल चांदी बरसाए, फ्रॉम द मूवी साज, देवकी पंडित जी के आवास में, कंपोज बाय भूपेन हजारिका अंत जाकिर हुसैन एंड सॉन्ग इज रिटन बाय जावेद अख्तार। हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है यारो, कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने के कुछ विद्वानों और कुछ पढ़े लिखे लोगों, मशहूर मशहूर लोगों ने मनुष्य इंसानियत के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे है यारो, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये यश उम्मीद लेकर कि इन बातों से जरूर कुछ ना कुछ हम लोग सीखेंगे। तो जरा गौर फरमाए। अर्ज किया है श्री वोल्टेयर, फ्रांस का राइटर एंड फिलोसोफ, ओक पीएस वन फ्रांसवा मारी अरुवेत 1694-1778। और वोल्टेयर ने कहा है मनुष्य के बारे में यार कि अस द मेंस परफेक्ट वास सो है खुद जैन। आगे में कहा है श्री हेनरी डे मोंटरलांट, फ्रांस स्क्राइवर 1896-1972। और हेनरी डे मोंटरलांट ने कहा है हम लोगों यानी मनुष्य के बारे में यार कि बाय द मेंस वर्ड द फ्लिंडर एन रिप्स। सोचने वाला बात है। अल्बर्ट कैमस, फ्रांस स्क्राइवर एसाइस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर लिटरेचर 1956, लीफ्ड वन 1913-1960। और अल्बर्ट कैमस ने कहा है मनुष्य के बारे में यार कि द मेंस हैव टू गेजिक्टन, हैव कैन नीट लीव हैवन सोंडर फन सिक्सेल्फ टू हौडन। Koos J. Versteeg, Nederlands dichter, verder identiteit onbekend. Koos J. Versteeg, nekahai, manusje ke barme aruki. De mens is maar juist zo fatsoenlijk als zijn hartstochten het toelaten. Blaise Pascal, Frans wis- en natuurkundige en filosoof, 1623-1662. Blaise Pascal, nekahai, manusje ke barme aruki. De mens is niet meer dan een zwak riet, maar het is een denkende riet. Het is niet nodig dat het heelal zich bewapent om hem te vernietigen. Een damp, een waterdruppel, volstaat om hem te doden. Nog eentje van Voltaire, Frans schrijver en filosoof, 1694-1778. Ook Voltaire, nekahai, de mens kan slechts een bepaald aantal tanden, haren en ideeën hebben. Er komt noodzakelijkerwijze een tijd waarop hij zijn tanden, zijn haren en ook zijn ideeën verliest. Immanuel Kant, Duits filosoof, 1724-1804. Immanuel Kant, nekahai manusje kebarmerki. De mens wil eendracht, maar de natuur weet veel beter wat goed is voor de soort. Zij wil tweedracht. Karel Heinrich Wacherl, Oostenrijks schrijver, 1897-1973. Ook Karel Heinrich Wacherl, de waarde van een mens herkent men aan wat hij met zijn vrije tijd weet te doen. Phil Bosmans, Belgisch pater en schrijver, 1922-2012. Phil Bosmans, een gelukkig mens brengt licht waar het donker is. Hij brengt leven waar het doods is. Helemaal waar hoor. Laatste van vandaag, Kahai Osip Davovich Luri, Russisch-Frans schrijver, 1868-1955. Osip Davovich Luri, een mens weet nooit waartoe hij in staat is. Volkomen onvoorziene omstandigheden kunnen heel zijn wijze van zien en beginnen en begrepen veranderen.
अभी आप कुछ कहावटे उदाहरण सुने जो मनुष्य के बारे में जाते हैं। ये आशा उम्मीद लेकर इन बातों को मैं आप श्रोताओं को सुनाया कि जरूर इन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखेंगे इंसानियत के बारे में। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को एक बार फिर वही महान फनकार डॉक्टर भूपेन हजारिका के ब्यूटीफुल मधुर आवाज में आप सुनेंगे गुप्ते गुप्ते।

0: जबरदस्त गाना और ख़ास करके श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट टू डॉक्टर भूपेन हजारिका, क्या महान संगीतकार ये था। और अति सुंदर बयान आप सुनेंगे महान फनकार के मधुर आवाज में। उस दिन की बात है, महान लेखक गुलजार के लफ्ज़े है और कुछ ये महान संगीतकार के बारे में वो भी आप सभी को बताने वाला है। तो मिल के सुनते हैं उस दिन की रात है बाय डॉक्टर भूपेन हजारिका।
1: भूपेन हजारिका को आवाम का शायर कहना कितना जायज़ है। जिस व्यक्ति जिस फर्द की बात करते हैं लगता है वो खुद कह रहा है। उसके लबों से निकली हुई आह अपने आप शायर के होंठों का मिसरा बन जाती है। उसमें कोई फासला महसूस नहीं होता। हाँ, असमिया से हिंदी होने तक जरूर कुछ फासला आ गया है। काश भूपेंदा की जबान के वो छोटे छोटे नुएंसेस अनुवाद हो सकते, जैसे वो ब्रह्मपुत्रा में नाव लेके जाते हुए मांझी की बात करते हैं।

ब्रह्मपुत्र को वहां लोक गीतों में लोहित कहते हैं। लोहित तो सब जगह नहीं जा सकता, लेकिन सागर सारे साहिल छू सकता है। रमैया मांझी सब जगह पहचाना जा सकता है और उस

masterpiece of composing by Dr. Bhupen Hazarika, महान लेखक गुलजार जी के अल्फाजे उस दिन की बात है, क्या बात है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो ओल्ड इज गोल्ड संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। महान संगीतकार द ग्रेट भूपेन हजारिका के कुछ नगमे आप सुन रहे हैं। अगला बयान ओ विदेशी बंधू ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज एंड संग बाय मैस्ट्रो डॉक्टर भूपेन हजारिका आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

0: आसामी से नगमा है। आप अभी सुना महान संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका के कंपोज और गाया हुआ अति सुंदर बयान। तो आज के इस हसीन कार्यक्रम में ये महान संगीतकार का एक आखिरी बयान आप सुनेंगे, और ये भी लिखा है महान लेखक द ग्रेट गुलजार जी। मिलके सुनते हैं ये किसी की सदा है।
1: ये शायर जिसका नाम भूपेन हजारिका है, कितनी आसानी से अवाम के दिलों की आहट सुन लेता है। ये रात जो लोगों के दर्द की रात है, अवाम के गम की रात है, जब उसके सीने में गूंजती है तो वो तलाश करने लगता है ये आवाज कहां से आ रही है, इनकलाब किस रास्ते से आ रहा है और दर्द किस रास्ते से आगे बढ़ रहा है। वो कान लगाए सुन रहा है और वक्त से पूछ रहा है ये किसकी सदा है।

ये किसकी सदा है, व्हाट ग्रेट कंपोजिंग बाय डॉक्टर भूपेन हजारिका, गुलजार जी का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान। तो हमारे प्रिय प्रिय सज्जनों, यही तक था आज का ये स्पेशल डॉक्टर भूपेन हजारिका जी का, जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो ये रेडियो स्टेशन है, आप ही का आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।

शालोम शुकुरालोम मैं फिले सजालो। रवि साहब जी के मधुर आवाज में हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, एक हीदम बढ़ते हैं प्रोग्राम के ओर और आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत करता है हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक महान फनकार, संगीतकार, गायक, क्या क्या नहीं थे हमारे संगीतकार का बादशाह और शहंशाह, द वन एंड ओनली किशोर दा के मधुर आवाज में आप सुनेंगे ये अति सुंदर बयान एड पुराना मूवी अदा 1951, कंपोज बाय द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर माएस्ट्रो मदन मोहन जी। दिल गया दिल गया।

है किसी की पतली कमर और किसी की तिरछी नजर, कोई कहे है आओ इधर, दिल कहे है जाओ उधर है।

A great composing by maestro Madan Mohan from the movie Ada 1951. Ursu Nadia Psibiko Mazedar Gaik, the one and only Hasino Kapujari Kishorda. Ik ben hoor, laten we die man fankar, jo kafi filmen me kam kie hai, or kitne mahan mahan गाने भी लिखे हैं, संगीत दिए हैं, क्या क्या नहीं थे किशोरदा, तो फिल्म अप्तनुम संपूर्ण कलाकार जिसे हम कहते थे, देश छुड़ाया बस छुड़ाया, पुराना मूवी चाचा जिंदाबाद 1955, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ अति सुंदर बयान कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन।

बड़ी डिफिकल्टी कल्टी डिफिकल्टी से मिलता है तकीला नकीला हबाहुबा लबालुबा दुम तक दुम तक तक तदुम दुम तक दुम तक तक तदुम बाउडी का बिबिडी का बिबिडी का डा डा बिबिडी का बाउडी का बाउडी का बिबिडी का बिबिडी का बाउडी का Jack and Jill went up the hill. Jack and Jill went up the hill inside.

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों की सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। लिफाउन हिंदुस्तानी रेडियो है FM 100.5 पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीबन 2 मिनट व्यतीत हो चला है 8:02 और यह लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हाग शहर से। जो बीमार है लाचार है तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी विवाह कोई भी उत्सव हो, फौन इंसानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। मुझसे पहले आप कार्यक्रम सुन रहे थे भैया सूर्यन भगवान दीन जी का। भैया सूर्यन भगवान दीन जी आपको भी कोटि से कोटि धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से, डायरेक्सी कलर्स तरफ से और अपने तरफ से। भैया यूसुफ मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरे बाजू में भैया मीनू भगवान दीन भी बैठा हुआ है। हम सब की तरफ से भैया सूर्यन भगवान दीन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। शुभ रात्रि भैया सूर्यन। सोनदक सैफ यूनी है, 7 जून है, आप तत्पर है। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहां भी होंगे, जिस देश में भी होंगे, कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने यंत्र द्वारा, आप सबका हृदय से स्वागत। सुबह होगा, शाम होगा, रात होगा या पचलहरा होगा, हृदय से स्वागत किया जा रहा है धनहा शहर से। हमने कहा सोनदक सैफ यूनी है, अगर सोनदक कहा यानी बृहस्पतिवार कहा तो इसका मतलब गीत गजल के कार्यक्रम हम सब लेकर हाजिर हैं। जैसे मैंने कहा भैया यूसुफ, भैया मीनू और गीत गजल के कार्यक्रम चलेगा करीबन 10 बजे तक। आप तार कर सकते हैं हमेशा की तरह, कुछ बातचीत होंगे और बातचीत के बाद आपको के पास कुछ गीत गजल के कुछ स्प्रे कोर्स होगा, कहानी होगा, फरहाल होगा, लतीफ़ा होगा यानी मोफा होगा, कोई नज़म होगा, फर्श होगा, कुछ भी आप कह सकते हैं। हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, नेखर एंगल्स में या जापान या फ्रांस भाषा में यानी मलाई भाषा में, जाली भाषा में, उसका कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भैया यूसुफ जो मेरे सामने बैठा हुआ है अभी भी इतालिया से आया, जहाँ तक मेरा ख्याल वहाँ का बतिया है भैया इटालियंस, वो इटालियंस भी जानता है अमोरे मियो। ये यूसुफ सब समझता है, पता ना है सूरीनाम में कौन का गांव में था। बहरहाल सभी तालों से वो वाकिफ है, भाषाओं से वाकिफ है। तो कार्यक्रम में चलिए हम पेश करते हैं पहला नंबर इस तरह से, जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने को, तार के नंबर ढूंढ रहे होंगे। अगर नहीं ढूंढे तो हम बता देते हैं 0 3 5 6 3 2 3 7 4 या तो 0 3 5 3 2 7 4 2 3 7 4 और ढूंढते रहिए, तब तक हम आपको ये गीत सुनाते हैं। इस तरह से बहुत पुराना गीत है, जी हाँ, 1951 का नई गिनती 85 तक फिल्म बाहर में से निकाल रहे हैं और गाने वाली है शमशाद बेगम जी। बहुत जानी पहचानी गीत है।

0: सैया दिल में आना रहे, बहुत पुरानी गीत है, जैसे मैंने कहा नहीं कहती एन फाइव तक ये शानदार गीत है, हमने पेश की वो फरफावन हिंदुस्तानी रादिया हो। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई लाइन पे ना भैया यूसुफ, फावन हिंदुस्तानी रादियो खुद नाफुंद
1: भाई
0: खुद नाफुंद सीला कैसे रहिले
1: या खत खुद और भाई
0: तब मोई और कुछ नवा हाल
1: या कुछ ना इसने सब भाई सचित
0: हम
1: मोई है।
0: हम तो सोची तू हमसे इतालियान स्तानी से बतिये
1: वासत मारवार भाई
0: हाँ, हम
1: मोई लगता
0: हमें के का फोर बराई कर ले रही लिए बाकी इतना आई थी तो या कर देती कैसे रह ले सिला आलस
1: को या खुद और भाई
0: कोई फकांसी खात
1: या हो रही लो क्या
0: मोई
1: या
0: अच्छा तो तू दो तीन घंटा बैठल रहे प्लेन में, दो तीन घंटा आई ले गई ले कुछ जरूर कुछ धल्ले हुई है कि आज
1: तू को धल्ली मा उतना लंबा ना है जैसे
0: माखनी तो आई चाहे लंबा हो या छोटा बताओ
1: एगो है दुनिया से सबसे खूबसूरत रिश्ता है दोस्ती का जो सिर्फ दिलों का मिलन से बनता है। एकवा है दवेंत इस अनफ्रिंड फ्रॉम द फोकल नेट सो आल्सो होप अनफ्रिंड इस फ्रॉम द मेंस
0: नो दिस हाथ एक नित खबूर्द
1: ओके
0: बहुत मोई है
1: या
0: नो तब वो कुछ कर ले सुन अब कब इटालिया जाइए फिर हम ये खेल जे तो इटालिया जाते लेके आवे उधर से कुछ
1: या
0: ए नेम डोय हेल मोई सीला थैंक यू वेल
1: थैंक यू भाई
0: अच्छा अब बता वार्न मैथ वेल क्लिक के नवे ऑफ अनाफंत
1: ब्लेम अते सम फिल्म शरारत
0: हां
1: तेरा तीर ओ बिपिया
0: अरे तेरा तीर ओ बिपीर रेखल
1: Ja?
0: Yes, goed dan.
1: Yes, goed, bye.
0: Dank je wel, Sila. Heel veel luisterplezier en fijne avond.
1: Dank je, bye. Dag, Sila. Dag,
0: bye. Dit is Sila ji, Ipenburg ke rehne wali. To chaliye, agla geet hum pesh kar rahe hain. Aur ye bhi ek purani geet hai. Wo thi Shamshad Begum ki. Aur ye bhi, ji haan, ye bhi Shamshad Begum ki hai. फिल्म नगमा, फिल्म नगमा में से निकाल रहे हैं। चलिए ये पुरानी गीत हम आपको सुनाते हैं, फिल्म नगमा में से निकाल कर नई खंतीन अभी देखेंगे। बहरहाल फिल्म नगमा से हम चला रहे हैं यह शानदार गीत।

0: जादूगर वालमा काहे जादू किया मुझ पे इतना बता। शमशाद बेगम की आवाज़ में आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए एक मिनट, यहाँ तक मेरा ख्याल कोई लाइन पे है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनावंत,
1: अस्सलाम वालेकुम, राम राम और नमस्कार, सस्त्री अकार।
0: वालेकुम अस्सलाम भैया, नमस्कार, कैसे समाचार हैं?
1: चले चले, कैसे आपके खैरियत और सब कैसे?
0: बस चले धीरे धीरे, ऊपर वाला के दया से।
1: वही कुछ बातें सुन, कुछ तोड़ी दे।
0: और कुछ नवा चीज तुम्हारे पास है?
1: एक पहली
0: वो, अच्छा ओके।
1: आशिक की पहले हवा सुहानी होती है, फिर बर्बाद पूरी जवानी होती है।
0: ऐसा कोई
1: या हर लड़का सोच से नहीं पिता सिगरेट, उसके पिछने भी कोई कहानी होती है। और एगो यहाँ आएगा और लंबा आएगा, मैं हम दूसरे के मौका दे रहा सब अपन अपन भी बोल सके।
0: ओके नहीं थैंक्स। अच्छा बताओ कौन गाना मांग रही सुने ब्रो राज?
1: फिल्म नाम बिरमा रोड,
0: हाँ
1: देखा तीन इना सेस्टर, मौसम ये पुकारे मस्जिद में, और गाय से लता और तलत महमूद और सब सुनने वालों के लिए और नाती लोग तुलक के खातिर और बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ।
0: मौसम ये पुकारे रीखल
1: और बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ।
0: भैया मोहम्मद दंग के वेल
1: वो का सेलर द एक सुबरात्री
0: तू के एक सुबरात्री
1: सेशन सेंडिंग
0: आ थैंक्स हो ए ब्रो दंग के वेल।
1: ओके राम राम,
0: जय सिया राम, नमस्कार,
1: जय सस्क्रियाकार।
0: ये था जनाब मोहम्मद दनहा के रहने वाला है। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है इस तरह से।

में और जीने की चाहत ना होती, एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में आपको सुनाया गया नेक दिन तख्त का ये गीत अरदीप बर्मन के साथ पर हमने पेश की। तो चलिए देखते हैं, इस वक्त लाइन पर कोई तो नहीं है जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने को। नल से इवन तक दिरी फाइव इन सात तक तु इन तुन तक से इफिन फेयर तक, या तो नल से इवन तक दिरी तु इन सात तक तु इन तक से इफिन से इफिन तक हम आपको एक गीत सुना रहे हैं। लेकिन उससे पहले बता दूँ भैया, ये उस हफ्ते मेरे सामने बैठा हुआ है भैया मीनू भगवान दीन भी बैठा हुआ है, लेकिन मेरे दाहिने और श्रीमान राजन द्वारका आप ही का आंसर साथी जो है हमेशा रहता है शुक्रवार को, नहीं यानी कब कब और रहता है। लेकिन भैया राजन द्वारका आपका भी स्वागत है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से और हम सब के तरफ से भी भैया राजन द्वारका धन्यवाद। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है शमशाद बेगम के बाद एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं शमशाद बेगम की आवाज़ में, ये भी फिल्म नगमा से निकाल कर, चलिए सुनते हैं।

ऐ मेरे मजबूर दिल, शमशाद बेगम की आवाज़ में आपको सुना गया। ये भी फिल्म नगमा में से निकाल कर हमने पेश की। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, लोग इस वक्त साहित्य अपने तैन में बैठे होंगे। बहरहाल अभी तैन में से आएंगे तो तार करेंगे ज़रूर। हाँ, ऐसा ना हो कि आप तार करें हल्फ नहीं कर, या हल्फ तीन जब हम जाने वाले हैं तो समय कम रहेगा, इसीलिए कोशिश करना कि पहले ही तार कर दो। चलिए, हम पेश करने वाले हैं इपन ब्यूरख के रहने वाली शीला जी। इपन ब्यूरख के रहने वाली शीला जी बहुत प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ अपने हॉबल स्टूल पर झूम झूम कर गीत का इंतज़ार कर रही है। तो हम आपको सुनाते हैं उन्हीं के मांगे हुए गीत। शीला जी जिसके के जिक्र आपने की है, वही गीत हम चलाने वाले हैं। देखते हैं, फिल्म शरारत में से निकाल कर लता जी की आवाज़ में शुभकामना के साथ। और शीला जी ये गीत मांग रही है अपने माशूक यूसुफ के लिए, जो मेरे सामने बैठा हुआ है। तो माशुका के तरफ से माशूक के लिए शुभ रात्रि और शुभकामना के साथ चलो ये गीत हम आपको सुनाते हैं।

0: तेरा तीर ओ बेतीर, फिल्म शरारत में से निकाले हैं लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया शंकर जय किशन के साज पर। और ये गीत हमने पेश की इबन ब्यूरख के रहने वाली माशुका सीला जी, माशुका सीला जी की तरफ से उनके माशुक जो मेरे सामने बैठा हुआ भैया यूसुफ के लिए, यानी माशुक यूसुफ के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। चलो जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई लाइन पर पौन हिंदुस्तानी रादी खुदना आफंत
1: या खुदना आफंत भाई।
0: अरे भैया चांद नमस्कार, खुदना आफंत
1: नमस्कार भाई,
0: कैसे समाचार हैं?
1: चले धीरे धीरे
0: तब मोई कैसे खिसला मोई
1: सब कोई मोई भाई
0: तब
1: घर पे आपके
0: कुछ धल्ले ब्रूर
1: ना धरल लिखल खोज एक पड़ी।
0: अच्छा अच्छा तो खोज लिए एक हफ्ता समय है नाम ना। अच्छा बताओ कौन गाना मंगा दिले सुने भैया?
1: क्या खूब लगता हो,
0: वाह क्या बात है,
1: फिल्म धर्मात्मा,
0: फिल्म क्या खूब लगती हो
1: या
0: लगती हो रेखल। और वैसे कुछ नवा हाल अल्फा नंदराइन के?
1: सब मोई है तनी वेर मोई रे खराब रे
0: वही तो ऐसा फला फ्रूदू है मैं। अच्छा अब शुरू ना भैले तुवें तक है ना तुवें तक लग शुरू हो जाना है
1: आजकल थोड़ा से गर्म हुआ मोई रात
0: हाँ
1: ना अचूफनी सो वारम तो और
0: दर या
1: ओ ना मोई है
0: नहीं प्रसीस मैं खुद जाने हम लोग कभी ना तफरीर रहे तो ये ठंडा बोले ठंडा है गर्म रात बोले बड़ा गर्म है जैसे कोई कोई को रहा नहीं ए ब्रूर Thank you well and hail feel loiser precious bhaiya.
1: Thank you hello bhai.
0: And tot the fall from the care.
1: Tot fall from the way.
0: Namaskar.
1: Ram Ram bhai.
0: Jai Siya Ram. Ye tha Shriman Chandra Ghunath unki dharmapatni Khisla ji shubhkamna ke sath. Aap dono ke ek shubh ratri pesh karte hue. Chaliye agla geet hum chalane wale hain koi hai line pe ji nahi aaya. Acha to lijiye आप सोचोगे क्या हुआ गंगा को आज सिर्फ शमशाद बेगम की आवाज़ सुनाई जा रही है। अच्छा ये मान नस्खे दौर फारा चलो एक बार फिर शमशाद बेगम की आवाज़ में फिल्म CID में से निकाले हमने।

फिल्म CID में से निकाले हैं शमशाद बेगम की आवाज़ में बूझ मेरा क्या नाम रहे। हमने पेश की वो फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो गीत गज़ल के कार्यक्रम में, जबकि आप भी हैं और हम सब भी यहाँ बैठे हुए, जैसे मैंने कहा भैया मीनू बैठा हुआ, भैया यूसुफ, भैया राजन, आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो है दिनहा के रहने वाला जनाब मोहम्मद के लिए। जवान जनाब मोहम्मद के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए, भैया मोहम्मद आपके गीत तैयार है, फिल्म बर्मा रोड में से निकाले हैं चित्रगुप्त के साथ पर, क्या ख्याल है, चला दूं? तो ठीक है, चला देते हैं भैया मोहम्मद के लिए दनहा के रहने वाला।

मौसम ये पुकारे लता जी, और देखते हैं एवर जी नहीं, द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत साहब ने दिन त्वीन शस्त्र का ये गीत फिल्म बर्मा रोड में से निकाल कर चित्रगुप्त के साथ पर हमने पेश की, और ये गीत चला देखते हैं दना के रहने वाला जनाब मोहम्मद के लिए जी नहीं, हाँ जनाब मोहम्मद के लिए शुभकामना के साथ। और जनाब मोहम्मद ये गीत मांगे सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए। तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से भैया मोहम्मद को शुभकामना भेजा जा रहा है यहाँ से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। भैया मोहम्मद आपको भी एक शुभ रात्रि पेश है। चलिए शुभ रात्रि पेश करने के बाद क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊं? जी हाँ, भैया राजन यहाँ बैठा हुआ, भैया राजन बोले सुख के गहरा बाजार, तो उन्होंने ज़मीन पर देखा एक झुमका गिरा है, तो ये कहानी जो हमें सुनाया तो हमें ये गीत याद आ गया।

0: हाँ जी आशा जी, आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की हो फरफान हिंदुस्तानी रेडियो। घड़ी पे देखो करीबन 7 मिनट बाकी है 9 बजे में सिर्फ मिनट तो फोर नहीं कर। चलिए यहाँ से हम पेश करते हैं विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद हम सब फिर वापस आते हैं। हम सब का मतलब है मैं, भैया मीनू भगवान दीन, भैया यूसेफ, भैया राजन द्वारका। कार्यक्रम सुनते रहना, जी हाँ कार्यक्रम सुनते रहना, क्योंकि न्यूज़ के बाद हमारा सहयोगी जो है भैया राजन द्वारका आपसे कुछ बतलाने वाला है, एक बहुत अहम बात है। जी हाँ, आज 7 तारीख जून है तो याद रखिए ध्यान में, 7 तारीख जून है, एक बहुत अहम बात वो आपसे बताने वाला है। चलिए विज्ञापन के बाद फिर हम सब आते हैं, बस हम सब यूँ गए और यूँ आए।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Miss Indian Beauty Pageant 2026. Op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de 3e editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren. Maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahun Hindustani Radio.
2: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
0: www.fahunfm.nl पर आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है और गीत गजल के कार्यक्रम जारी है तो देखते हैं लाइन पर कोई है। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंत खुदनाफंत मुफरबिया हुआ
5: Ja, gaat prima.
0: En hoe is het met Utrecht? Barka, Barsa, ki jhoor hoor hai ki na?
5: Tani, o, sabere ki juli, Barsa se, ab de taluk fol hova kari se.
0: Haan, na, tab, tajarat ki je sood jayye, tab phir dikhye ka hova.
5: Eh?
0: Tajarat ki sood jayye, chahe Barsa, chahe na, ya hi lek dan droog.
5: Jab sood jayla, tada sunila.
0: Ya, precies.
5: Ma khalis toram hoye, tab alam jag jayla.
0: Oh, ya, da, ta sehi kar. Bada bada hoil kar hai.
5: Haan, to.
0: एम फ्रो भैया सब कुछ मोई लड़कन बालन सब अच्छा परिवार
5: सबको
0: तब मोई अच्छा बताओ कोनो कुछ धल ले कोनो खसाखदा उखदो कुछ अच्छा खैब नि तू हंस दे ले तुम समझ गई ली
5: अबे हवा कट बोलिए तो
0: ना सुन तू कोनो गाना में से निकाल लिए एक रही खोल तो
5: हाँ
0: कोनो गाना में से निकाल रही है यानी गनवान इस नेक्स्ट आंदर्स गन कहावत एंड क्लाइन फॉर हाल जे फसेख दस या
5: फिल्मों में जब बतिया तो सुन के वही लिख ले
0: हाँ प्रसीस
5: हाँ अच्छा अच्छा
0: नहीं मोई जैसे वो राजकुमार बोला था हमें बोले आपके पैर देखे बहुत खूबसूरत है इसे जमीन पर मत उतारिए मैले हो जाएंगे कौन का नाम फिल्म का है ना डायलॉग तो बोल दे ले बाकी भुला ही गए ले ना ना ना पाकिजा हाँ पाकिजा
5: आपके
0: आपके पैर देखे दस मिस्टेक से राजकुमार फरकीर द वाहन में चल गया बैठे जहाँ पर मीना कुमारी रहा शायद याद हुई उस सिनेमा सो विच से ढेर फिल्म में आवे है। अच्छा भैया बताओ कौन गाना मांगत रहे बात सुने
5: वो मकलक है खून कभी किसी के खुशियां को लूटेना
0: कभी किसी की खुशियां रेखल ओके ठीक भैया थैंक यू वेल
5: अच्छा
0: Heel veel luisterplezier bij jou.
5: Ja, dank je.
0: En tot de volgende keer, ठीक है?
5: Ja, tot volgende keer.
0: Oké, dag bij jou. Fijne avond.
5: Dag.
0: Ye thi Beya ji uit Utrecht, Utrecht ke rehne wali Beya ji. To theek hai bhaiya ye sabko acha. To humne kaha tha vigyapan se pehle ki bhaiya Rajan Dwarka yahan baitha hua hai, bhaiya Rajan Dwarka jabki aaj Sondag Seif Uni hai, aapse kuch batane wale hain. तो उम्मीद है आपने ही थी प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी से कह दिए होंगे कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो कुछ खास बात बताने वाला है कुछ अहम बात
6: जेंटलमैन ऑन बिहाफ ऑफ ईएमआई वी वेलकम ऑल डिस्को लवर्स ऑन बोर्ड आवर फ्लाइट अराउंड द वर्ल्ड प्लीज कीप योर सीट बेल्ट्स फास्टेंड एंड योर सीट्स इन एन अपराइट पोजीशन फॉर टेक ऑफ थैंक यू
0: भैया राजन आपका हृदय से स्वागत है
7: थैंक यू भाई गंगा सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार आदाब बरसो और हम घूमर घूमर स्टूडियो में आ जाए गए लिए आज जे सहेली है तो गंगा हमें माइक्रोफोन के पाछे बैठा देले
0: पहला बात है बहुत धन्यवाद भैया राजन तू आए गए ले
7: काम माथिर बोले आज यूनिक है तो वही दिन है जब तक में सूरीनाम का एक हवाई जहाज SLM का एक हवाई जहाज एंटोनी नेस्टी जी का नाम रखा गया था वो गिरल है और दुख के बात है कि लगभग सब इंसिडेंट में मर गए 188 तक बैठा था प्लेन में और उस उम्र में से 187 तक वो मर गए सब कोई सोचो अंदर देखो नंदलाल हिंदुस्तानी अभी जेल सब कोई बोले है खड़े ये वो जेल है मान नहीं
0: ओहो नाना
7: नहीं नहीं और अने नंदलाल और दूसरे और वो अंदर फ्लिक देखो हमें नेशनल एलेफ्टाल रहा जो क्लियर लेक एलेफ्टाल
0: या
7: वो हर एक साल जाता सुनाव में फुटबॉल खेले
0: हम सुनी एक टीम चल गए रहा एक टीम बाकी रहा दाखते क्या
7: एक यार सीकर गंगा एक टीम चल गया एक टीम बाकी तो एक टीम हुआ में ये फ्लिक देखो जब गिरल है सवेरे तब उनमें से तीन को फुटबॉलर स्लेंगर हो के फ्लिक देशों से बाहर गए थे तब बचल है
0: ओके
7: और इस सब फुटबॉलरों से के रहा बताए रहा ना ये प्लुक के जन फुटबॉलर रहा ये था ना उसे पहले रिथखिलिट अब फ्रैंक रैकार्ड और आरन विंटर इस सब के एड नोडिक रहा लेकिन इस सब हन न गए इस सब के क्लिप जो रहा इस सब के न दे रहा फ्राई और ब्रायन रॉय भी रहा हैंक फ्रेसर इस सब तो स्टेमिंग न मिल जाएगा तो इस सब न गए
0: नतीजा इन द एयरसन सांसी बात गुर्राइल हुई है
7: हाँ और ना उससे पहले एक रोज पहले डुलमा स्टैनली मैंसो और हैनी मेयर जो आयक्स के भी रहा ये सब एक दूसरे फ्लिक से एक रोज पहले चल गया या तो देख दिए कि जैसे रहा ना
0: इस टोटल थ्री फ्लिक तो जात
7: नहीं
0: एक चल गया रहा एक जा एक चल गया रहा
7: नहीं
0: एक पहले ही चल गया रहा
7: निखरी एक फ्लिक हमने नहीं उस फ्लिक तो हमें गया रहा नहीं नहीं ये जस ये एक नॉर्मल एक फ्लिक रहा ऐसे लैंप के ओ में बैठा रहा ये ना फुटबॉल के एलफ्टा जो जो बाल गए रहे मार जैसे हम बल्ले जब ना स्टैनली मैंसो और ना हैनी मेयर ये सब एक रोज पहले चल गया रहा शायद सबके कुछ और ऑर्गेनाइज शेयर कर रहा है
0: वर्ष का
7: एक और एक कोई ना रित खुली था एक बार उस पर क्लब से तो स्टेमिंग ना पाया ला जैसे ऐसे जी जॉब है ना मार ना जो फुटबॉल प्लुक रहा में फेस्टिंग लीडर जो रहा उस सबके मृत्यु हुआ 15 जने मरा Dus ooit zit toch uiteindelijk kan je niet meer maar al, hè. Maar, en hier gewoon is 67, maar ze 15 go, is een voetballer, zeg. En dan gaan we, tap ze, die bijl, hè, 1989, tap ze die toernooi gewoon op een organiseer.
0: Nou,
7: ik ben slap hier. Ik vind het wel erg, die, ze hebben een organiseer maar pin, maar nee, ja, en moeilijke vraag, hè. और जैसे न्यूज में आए हम तो उतने पे सुनाम रहते हैं और सवेरे हम न्यूज में पढ़ ली क्रांति में कि प्लेन गिरल है तो दोरो पर तो हम लिखल है कि जो पिलोत रहा तो बुढ़वा मने रहा
0: हाँ कोई वो हम सुन ले रहे
7: हैं कुछ तो स्टेम ना हाँ वो राय का सो मैं जब हादसा हो है तब पता लगा उसे पहले पता थोड़ा लगे क्या कुछ है कई बजे
0: लगे उसे पहले न जाने कई दाएं आयल गए जब कुछ भयल तब
7: नहीं मैं गंगा सुनाम रहती हम अपन ऑटो स्टार्ट कर ली लड़कन के बैठे ले को बीरमान के भी बैठे ले अपन लड़का के लेके तो हम लोग गए ली है ना सांदारी के पास जो रसुआ सबन जा कोला क्रेक वही कोला क्रेक आसपास पास हो के अडाम के बगलिए मैंने देखी भीतर बहुत
0: ओके
7: गिरल था ऑटो पार्क कर लिया फिर मैंने आवे जा था मैंने आज सिपाही अभी ने राजन कंट्रोल कर था
0: ओके
7: तब न हम गए लिए तो हम देखी डेमो कर दिया एक स्टेक स्टाल अल्युमिनियम के स्टाल इसे आगे वो में जा रही थी वो डंडा पहली तो हमें मान ली एक स्टेक पहली हम
0: ओके
7: तो स्टेक को हम ऑटो के बाकी में रख ले ली और उसी जो आज तलुक हमें है
0: या एक यादगार
7: ये हमारी हमारे बालकन में आज तलुक है वो तुक ली और मैं डाटा में भी लिखवा ली
0: नहीं मुई कर ले से होइल मुई है रे
7: या मुई है
0: अरे सन विषय में तो फुसुर नाम जो सबके पास ना हो तब
7: दत क्लब मार फिर से बहुत ये का बोली गंगा लोग के नाम जेगो कायलम के फ्लिप के गिरत तो जितना मने के मरल रहा सो पलवार जो कुछ पावत सो मैं वो चीज़ वो इसलिए के इफ्लेक तो एक दो ही बारी समझाक लड़ी लें सो मैं पता कर ले दो पत में चल गए
0: ना पता लगा
7: ना पता नहीं लगा
0: फोन में ही या नौ लॉयस्टरार्स आलसी में स्किन दित फरहाल पर भैया राजन द्वार का लॉयस्टर एंड इंडियन इट्स नोख वेट ओवर दित फरहाल वात वे मिस्किन तुफालक नित वेट सोल्स na 2 jaar tab koi na kuch zikr yani hindustani bole koi kaan poochh na dolais na pata lagal waar het geëindigd is dus als u dat weet nou zouden wij toch graag dat willen weten
7: ha
0: bhaiya rajan ga door
7: ha aur jo teen go jo na footballers jo mashallah aur ha footballer rajan dahan aur aage chal ke sigi lens aur Edu Nandalal Fidesa ke speler.
0: Okay.
7: Yeah, this nokmals nakli ek footballer bachal
0: teen ko bachal rahe hain. Ival ke hum na janat rahe li.
7: Ne hum to ek in sign to sab ko hum to aate soche the mar jab padhi hai book mein so tab.
0: Yeah yeah yeah. Is rabe to book hai to brakh to kar.
7: Yeah.
0: Wo book hai.
7: Yeah, filter kar diya.
0: Yeah.
7: Prima var. Maran sabhan bole motoris problem raha kono bole hai. पिलोट बहुत लाख फ्लिक कर रहा बहुत न फैसला
0: फिर बोला तेरा हम मिस्तक है
7: या मिस्तक
0: पेड़ ना देखी फिर केर द आन वैसे जैसे बकरा बोले तस्ते इन इन डॉस्टर
7: मगर को हम तो खुद वही जो फ्लिक तय राम भाईल है वही के एक हफ्ता बाद तू कयाना ऑप्शन पे खराब भाईल बंदूक लेके जानो तू कयाना लोग
0: हां हां हां
7: तो हम ने जाने हम सोचिला काहे नो इस द डाक दे
0: वी वेट
7: इंडिया ने दौलत हमारा
0: वी वेट
7: सॉरी दैट थिंग दैट
0: सब कुछ हो सका है
7: या हमारा ना वेल एंड अब तलुक एसएलएम के फिल्टर गिल में तब से अब है आज तलुक ना एसएलएम के सर्विस देख हम लास्ट गिल सुना मैं एसएलएम में फ्री खाली मोई खाए सब कोई सब कोई खाली खाए के बाद
0: हां खाए मावरिया खाली खाए को है टॉप
7: देखो बहुत उधर देखो छोटा घोस खातिर कोई बात नहीं मैं चाहे दो घंटे का फर्क लाके बुला ही जाए
0: अदर सन लिव द फॉर एसएलएम एंड सुरिनाम ना तू लाइक
7: लिव द या मार अब भी फ्लिक अब भी एसएलएम जो अब भी उस ताबिल मस का पेन भी उतना दिल से देख
0: पैसा रोल खेले थैंक यू
7: या पैसा रोल खेले हम
0: पैसा बहुत हां बाकी पैसा चला जाए कहीं
7: या हम यार तो ही देश में घर ही सुरिनाम फिर एक दफे तब हम आते हैं वो एक्स्ट्रा बहा शकी ने
0: Oké.
7: De SLM is een kantoor waarmee. De hebben 80 en 70.
8: 80 euro.
7: Ja, dat is een extra bagage. Maar ik kijk niet wat ik kan doen met mijn bedrijf.
0: Ja.
7: Als je je KLM kan hebben, een ticket, een probleem, dan zie je dat je 4-5 jaar kan maken. Dat is een barca maatschappij. Dus je pijs is, je is een kankarta.
0: Kankarta, ja.
7: Maar je hebt geen beter tijd, je hebt geen money overleven.
0: Ja, apen op een party money daar.
7: Dan hoe ga je het chalie man?
0: Dan gaat het niet.
7: Ja, nee. Maar we later onderweg, dan gaan we
0: maar ja, de belasting betalen van Suriname.
7: Ja, klopt. Dus moeilijk gaan gaan. Ja. En Suriname is karbaar, maar heel moeilijk. Har ik nou op de kring jouw, tegen nou een directie jouw. Benoem hoor.
0: सब कोई अपन मने के बैठा हुआ है
7: सब कोई अपन मने बैठा हुआ
0: है बड़ा अफसोस की बात है ना
7: या मैं हम लोगों देख हम सनाम रहते हम बोलती महलो अवस्थान में ना आ रहा लोग खाली जो फोड़े फाड़े कर रहे शहर में जहाँ झूठा चोरी कर ले तो अब घर ही चोरी कर ले तो हम लोग वेल उची जो कर ला मैं बापा ने चीज के अवस्थान में हम लोग ना आएगा दैट इज नॉट गुड
0: आवे आफ एन तू बाकी अब दिन देर फरफाख हो जाए
7: या हम तो जो ले जा रहा है जो बोले बंद कर दे
0: हाँ
7: तब बंद कर मार वो मम्मी भी चाहे ले जा रहा खदेर के दूसरा ले जा बैठा है और को पैसा ले बैठो
0: मक्के जाने ले जा रहा हूँ उन दूर दूर खो जाते हो अब दिन देर सौ उक वालके ना
7: लाते से हम कोप
0: इन अल्फा भैया राजन हर लगदांग दत मैं खवेस्ट और सुनने वाले सुरताज उनसे बता दे ले ऊपर से हादसा दत खवेस्ट इस हुफिल यार खलीदे 37 jaar
7: geleden.
0: Ja. Kitne ladkan jo to 35 en minder sait soche to hi kitne na janat hoi. Nou Rajan, namens van Hindustani Radio alle collega's directie wordt je van harte bedankt. Bahut bahut dhanyawad. Rajan tu aile. Ja. Dankjewel.
9: Chale aaj tum jahan se

0: तुम जान से प्यारी हो, जान हमारी हो। फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में आप सुने क्या खूब लगती हो, और ये गीत चलाया गया अल्फन अंदरेन के रहने वाला श्रीमान चांद्र घुनाथ और उनकी धर्मपत्नी खिसला के लिए। उन दोनों की तरफ से शुभकामना के साथ ये गीत पेश हुआ ऊपर फौन हिंदुस्तानी रेडियो गीत गजल। भैया चांद और खिसला जी, आप दोनों को भी शुभ रात्रि पेश हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई लाइन पर है फौन हिंदुस्तानी रेडियो खुद नाफंत।
1: भैया राम राम, भाई राम, यांकी से ठाकुर भाई।
0: भैया यांकी ना,
1: हाँ राम, या
0: भैया यांकी, जय श्री राम। कैसे समाचार है?
1: सब कुछ ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है। कैसे रहला आप लोग?
0: बस चले धीरे धीरे, ऊपर वाला के दया से, आप लोग के कृपा से, आशीर्वाद से चले धीरे धीरे।
1: चाहे हरदम अच्छा सोचे के, बढ़िया पॉजिटिव है।
0: हाँ, सब बोले पॉजिटिव सोचिए तो।
1: हाँ, चाहे दुनिया में कौन चीज होएगा, चाहे जो चीज हो, देख आज हमारे माता के मृत्यु हो गए 40 बरिस भैया। आज आज 7 तारीख के हमारे माई के मृत्यु, मतलब वो हम पॉजिटिव बाटी दुनिया में। सब कोई के एक दिन रूठे के, सब कोई दुनिया के
0: एक दिन सब कोई जाए ब्रूर।
1: हाँ, लेकिन
0: आज मेरी कल तेरा
1: जुल के रहे के दुश्मन नहीं, ना चाहे था मेके
0: बिल्कुल नहीं
1: है। सब कोई की चाहे मिलजुल के रहे के अवार नो द हेल्प ऑन द हाथ आई टेक
0: सही कर वही तो।
1: हाँ, बस यही बात हम हरदम अपन हिंदुस्तानी भाई बहन लोग के हरदम बोली रहा, चाहे चाहे पलवार में, चाहे जहाँ, चाहे नौतहाकारी में, हरदम जब एक बात बोली ला तो सब कोई के बढ़िया का अच्छाई का बोली ला।
0: हाँ, बहुत अच्छी बात है।
1: और एगो कहानी रहा, एगो कहावत रहा।
0: हाँ, हम तो घोड़ते हैं।
1: एगो कहावत है का, बोले है गो दान करो घोड़ा के मुख में कभी ना तकिए। मतलब जाने का है तो
0: ना बता दे ही लागे सब जनता सुन ले।
1: एगो दान करो घोड़ा के मुख में कभी ना तकिए, मतलब है कि चाहे एगो छोटा चीज, एगो छोटा तोहफा, चाहे जो चीज तो के, चाहे वो सुई कोई दे, कभी ना बोलिए कि हम कितना छोटा तोहफा दे ले, तू खाली हमें को सुई दे ले, कभी ना
0: इतरा चाहे करे के, स्वीकार चाहे करे के,
1: चाहे स्वीकार करके उतने प्रेम भावना से ले ले,
0: वही बात।
1: चाहे एगो एगो गुलगुल्ला तो के दे, चाहे वो बड़का तोहफा का दूचे दे, माँ की तरह बात माँ ऊपर ना जा कुछ बोले के मान चीज तो बहुत छोटा चीज है। यही भर दे,
0: तू ना जा सके कौन हिला से उदीस है।
1: बरसीस देश चाहे वो के स्वीकार कर लेवे के, उतने प्रेम भावना से प्यार से के स्वीकार कर लेवे के और आशीर्वाद दे देवे के।
0: बहुत अच्छी बात भैया जानकी।
1: हाँ, यही कहानी रहा भैया, और आप लोग के भगवान की कृपा की आप लोग ये काम जो करे सदा से करे।
0: सेवा तो चाहे करे ब्रूर,
1: सेवा चाहिए वो हम लोग के धर्म पे नंबर ए नहीं गा, एक अपन के देखभाल
0: अवश्य बात।
1: इसलिए हम लोग मनुष्य बाटी, इसलिए हम लोग इंसान बाटी, एक अपन के मदद करे खात ना,
0: एक दूसरे का हाथ बतावे खातिर।
1: हमारा माता पिता हम लोग का इससे सिखाए, जैसे कि 10 रोटी है तो तू 8 रोटी बांट दे, तू 10 रोटियां थोड़ो खाई पी
0: है,
1: 8 को बांट दे। अपन अपन चाहे पलवार, चाहे जे, चाहे जे जे तो कहने से करेंगे, चाहे जेके
0: जरूर जरूर जरूर
1: देव दान पुण कर, वही बोले या अरे दोनाती देवे देवे, हम लोग देव दोनेर करीला, चाहे गरीब दुखिया
0: बोले दया कर, दान कर, दमन कर, दे दे दे, दिल दे के देखो ना है, दया कर, दान कर, दमन कर।
1: हाँ, ना अपन अपन अपन पेट खाली सोच, दूसर कोई के भी सोच, जैसे तू मांगे खाए पिए वैसे दूसर कोई के भी खवाओ पियाओ,
0: बोले भी बोले दूसरे की उन्नति में अपना भी उन्नति देखनी चाहिए।
1: और, और, और, और दान पूर्ण कर जले तना सोचे हम 10 रुपया दान कर ली, हम 10 रुपया गरीब हो गली ना, तो 20 रुपया धनी हो गए, चाहे जिस रूप में चाहे जो रूप में वो लौट के आई तोड़ लगे,
0: परमात्मा तो जरूर दे दी, कोई नहीं लगा
1: बात है।
0: बहुत अच्छा भैया जानकी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी गनवा हम लोग फार्ट में ना भुला जाये,
1: गनवा घुमाइये भाई, घुमाइये
0: नहीं, कौन गनवा है
1: वो गरवा है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा,
0: रेखल
1: जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे,
0: क्या बात है।
1: हाँ, बहुत विशाल गाना है भाई,
0: सही कर रही था। अच्छा भैया यांकी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: या एकदम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।
0: कुछ वक्त यो सब कुछ मांगते बोले।
1: हाँ बोल भाई।
0: हाँ

0: ये सब बोले कुछ मांगते रहे बोले और
1: हाँ ना यही बोले जो बोली वही मांगते रहे बोले
2: ना तू बोले रे दूसरे के खाते ना
0: जयंती और रेशमा
1: रेशमा भग्गू खास हमारे दोनों दीदिया है तो
0: अच्छा इसको दन
1: ललिफा दीदिया सो मैं
0: ओके थैंक यू वेल
1: हाँ सूरत हो दीदिया खुरुचो सो भाई राम यहाँ क्यों तार दर
0: भाई सुन ले लो इन सोचिला जहान हुई रेडियो से कर सुन ले लो भाई
1: हां जरूर तो तमाम दुनिया सुने सब
0: अच्छा ओके ए ब्रो ऐसे ही रही बहुत-बहुत धन्यवाद
1: बहुत-बहुत धन्यवाद भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर
0: धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से शुभ रात्रि
1: तक स्वीकार कर या ओके
0: स्वीकार
1: आराम राम भाई सीता
0: राम जय श्री राम भैया ये था श्रीमान यंग की जो भी फीडबैक कर रहने वाला है तो चलिए अगला गीत हम पेश करने ओ सॉरी हरदर भाई क्षमा करना हरदर भाई जाने सब वही के हो जाए तो हरदर भाई मछरिया वाला तो हाँ हरदर भाई हाँ अच्छा तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है भैया यूसुफ के लिए अरे भैया यूसुफ तो हार पारी आई गल माशुक यूसुफ की तरफ से उनका माशुक का जो इपन बिरख में बैठी हुई है शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए माशुक यूसुफ की तरफ से सीला के लिए

0: To enjoy evergreen melodious songs from
1: सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज, रवि साहब की आवाज में आपको सुनाया गया फिल्म अमन में से निकाल कर ये शानदार गीत पेश हुआ। और ये गीत चला देखते हैं इबन बेरख के रहने वाला माशुक योसेफ की तरफ से माशुका सीला जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए ये गीत गजल के कार्यक्रम में पेश किया गया। तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। उससे पहले कोई लाइन पर है, एक मिनट। कौन मुस्तानी राधी? खुदनाफंत फ्रॉम बेया।
2: हम आई गली हम नेट आई लव हिप्टर।
1: ओ तो बहुत अच्छा।
2: हम कुछ मिसिल हाल एक नेट मिसिल वर्ड तो लात मत तो एक बैंड तो हो टाइट
1: नहीं अबे है। हाँ बेया बताओ
2: यार संदार।
1: नो बताओ कौन गाना पहले बता दे।
2: गाना है एक साइड को हर सम फिल्म वाफ।
1: हाँ
2: हम जब सिमट के आपकी
1: हम जब सिमट के आपके रेखल। और कोनो कहावत धले भैया?
2: कौन कहावत धली है? जो देर के धरी ला अब जब खोजी ला तो हालिस ना पाई ला।
1: ले कर लो बात। एक बार बोले पूजा के समय खसी है राय के देखो।
2: या दस साउथ एक शो है भैया खुश है ना एक दा हम आवे कि ना आवे दस एक दा या एक मुस्काई से
1: तू जल्दी से बोल दे
2: है?
1: जल्दी से बोल दे तू
2: जल्दी से बोल दे। हम लोग यानी कुनवाल जल्दी से बोल दे एक कह तो हो कुनवाल जल्दी से बोल दे ए फकाय का हम थक गली थी वहाँ बैठे ऐसे हाथ रेस्टोरेंट तक खाली बैठो चलो ऐसे उखाड़ के ताला मार ए फकाय का वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है मगर इंसान का असल चेहरा उसे मुश्किल वक्त में नजर आता है।
1: और बाकी दोनों तू धल्ले रही है एक हफ्ता कथिन
2: हम हमें चाहे आगे से सब चीज लिख के धल्ले
1: भैया दंक यू वेल या Ja. Want vandaag hebben wij niet veel tijd meer over.
2: Nee.
1: Want
2: de volgende week.
1: Einde van Belka, dus ja, dat mag even niet. Kan ja. gebeuren. Beja, dankjewel.
2: Is goed.
1: Ik wens je een mooie avond.
2: Ja, mooie ja. uitzending.
1: Ja.
2: En een fijne avond.
1: Dankjewel, Beja.
2: Tot de volgende keer.
1: Ja, oké, dag.
2: Oké, dag, dag.
1: Van Hindustani Radio, goedenavond.
3: गुड नाफ्ट भाई गंगा जय राम जी की
1: भैया प्रेम कैसे समाचार हैं?
3: चले तनी लटम पटम और तनी दूर को एक रात है दारम है पे को मेरे लाख को बेल
1: खेफ नित अब तनी से तय थे
3: ओ है बे तनी
1: हाँ, सही कर रही थी
3: एक बार आउट आई द हैकर स्लाइसर के वेस्ट ऊपर आओ
1: हम के जना तू ही लाख से है।
3: अच्छा ओके
1: भैया प्रेम आफास तू गनवा बता दे।
3: हाँ बहुत दिया देने वाले ने तुमको
1: मुकेश वाला ना रही खाली।
3: हाँ मुकेश या और हम कौन चीज दे पावे आप लोग के जो उन प्यार है प्रेम है वही हम दे देला तो लोग के और हर वक्त जब मौका मिले तब आप लोग से एक दो बात कर लेना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नखराखिलाते
1: हैं तो मेरा
3: या
1: एंड तो द फॉलोइंग ईयर भाई प्रेम
3: अच्छी बात है।
1: हां तो लंबा चौड़ा तोरी देवे कोई।
3: हां तो लंबा चौड़ा तोरी होई जब रह तब दान हब तब देखल जाए।
1: सही कर रहे थे।
3: अच्छा
1: फेन आ बंद
3: बॉय आर सेंडिंग एंड
1: तो द फॉलोइंग ईयर या थैंक यू
3: ओके आल्सो दिस
1: जॉय ये था भैया प्रेम देन हां के रहने वाला। तो चलिए देखते हैं बेया जी इतरा के रहने वाली शुभकामना के साथ चलिए ये गीत हम पेश कर रहे हैं बेया जी के लिए। इस तरह से बेया जी,

कभी किसी की खुशियाँ कोई लूटे ना, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और ये गीत चला उत्तराखंड के रहने वाले बिया जी के लिए, उत्तराखंड के रहने वाले बिया जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए ये पेश किया गया। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं मीला जी, सूत्रमेर के रहने वाले मीला जी और उनकी खाविंद मंसूर के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए, यानी मीला जी की तरफ से उनके खाविंद भैया मंसूर के लिए और मंसूर जी की तरफ से मीला जी के लिए, यानी एक दूसरे के लिए एक दूजे के लिए शुभकामना के साथ मीला जी ये गीत।

तेरा जलवा जिसने देखा, ये शानदार गीत पेश हुआ रोतरदाम के रहने वाली उर्सिला जी के लिए। उर्सिला जी, शुभकामना के साथ ये शानदार गीत हम लोगों ने चलाए, उम्मीद है गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा। और ये चला उर्सिला जी के, रोतरदाम के रहने वाली उर्सिला जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला गीत हम पेश करने वाले हैं वो है मीला जी, सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी के लिए। मीला जी, शुभकामना के साथ इस तरह से आपकी गीत हम पेश कर रहे हैं मीला जी के लिए।

0: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा।
1: करना ये गीत, हाँ ये गीत है हरदर बेग, हरदर बेग के रहने वाला श्रीमान यंकी के तरफ से जयंती पाटम दीन के लिए और उनकी माँ के लिए, और साथ ही साथ रेशमा भग्गू के तरफ से और उनके माँ के लिए शुभकामना के साथ, श्रीमान यंकी जो हरदर बेग के रहने वाला है उनके लिए ये गीत पेश है, जयंती पाटम दीन और रेशमा भग्गू की तरफ से उनके माँ के लिए शुभकामना के साथ, श्रीमान यंकी जी के लिए ये गीत।

एक प्यार का नगमा है मैं तो मुकेश और लता जी की आवाज़ में सुनाया गया ये गीत और चला सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी की तरफ से जनाब मंसूर के लिए और जनाब मंसूर की तरफ से मीला जी के लिए एक दूजे के लिए यानी एक दूसरे के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चलिए अगला गीत चलाने वाला हूँ और वो है दनाक दनाक के रहने वाले बेया गजराज जी। बेया गजराज जी की तरफ से ये गीत चलाया जा रहा है फाउन स्थानीय राजू चला रहे हैं बेया जी के लिए बेया गजराज जी के लिए शुभकामना के साथ चलो ये गीत बेया जी इस तरह से आ रहा है।

हम सब सिमट के आपके बाहों में आ गए हैं। महेंद्र कपूर जी और आशा जी फिल्म वक्त में से निकाल कर हमने पेश की और ये गीत चला दे रहा के रहने वाली बेया गजराज जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए बेया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है। एक आखिरी गीत बचा है और वो है देनहाक के रहने वाला श्रीमान प्रेम। श्रीमान प्रेम के लिए शुभकामना के साथ आपको भी धन्यवाद देते हुए फाउनिस्तानी रेडियो द्वारा आपके लिए भैया प्रेम आपकी मांगी हुई गीत हम चला रहे हैं। देनहाक के रहने वाला भैया प्रेम के लिए।

0: बहुत दे दिया देने वाले ने तुझको, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। आपको सुनाए ये गीत शुभकामना के साथ। अब ये गीत चला गीत गजल के कार्यक्रम में, सौंदक सेफ यूनिक है श्रीमान प्रेम के लिए, शुभकामना के साथ भैया प्रेम आपके लिए ये गीत चलाया गया। तो देखते हैं यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की। भैया यूसुफ सभी को धन्यवाद दे दें इस तरह से। भैया यूसुफ आपको भी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, और भैया मीनू भगवान दीन को भी जो हम लोगों के साथ दी, भैया मीनू भगवान दीन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया यूसुफ
1: या इक विल द मेंस ऑफ अनाफंत बदांक दे हैव गेबेल्ट दैट इज मेफ्रो सीला uit Ippenburg, de heer Mohammed uit Den Haag, de heer Chandra Gunat uit Alfa aan de Rijn, de heer Jozef uit Ippenburg, mevrouw Bea uit Utrecht, mevrouw Ursula uit Rotterdam, mevrouw Mila uit Soetermeer, de heer Raam Janki uit Harderwijk, mevrouw Bea Gedraat uit Den Haag en de heer Prim uit Den Haag. Dat waren de bellers voor vanavond.
0: En het was voor Jente Patemdien
1: en ook voor Patemdien,
0: haar moeder.
1: Moeder van mevrouw Patemdien en Resma Bhaggu en
0: voor haar moeder ook.
1: Moeder. Ja. Ja, dat waren de mensen.
0: Bhaiya Yosef, dankjewel. En bhaiya Minu ook dankjewel. Yahan tak tha ye karyakram jo maine pesh ki. Is umeed ke saath aap sabko acha laga hoga. Main aapse mil raha hoon aane wala dondradah ko, yani gurwar ko 12 aur 3 ke darmiyan, to 12 andriyur. Aur sabhi srotaon ko main bahut bahut dhanyawad de raha hoon apne taraf se bhi, aur Fan Hindustani Radio ke sabhi srotaon ki taraf se.

तो यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की। मैं सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ और मेरे पास बाद आप सुनोगे हमारे सहयोगियों के जरिए कार्यक्रम और आगे जो पेश करने वाले हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिल रहा हूँ दोनों रात को। आप सबको एक शुभ रात्रि पेश किया जाए।

0: बड़ी अरमान से लिखा है बलम तेरी कसम फिल्म मल्हार का ये गाना नेखतिन एन फैफ्तख का, जिसको जिस फिल्म में लता जी और मुकेश जी गाया है। और ये गाना जो अब हम चलाने जाते हैं भैया, ये गाना जो है बहुत पुराना गाना है गीता दत्त शैलेंद्र का, और इसमें हेमंत कुमार ने भी इस गाना को गाया है। दादा हेमंत कुमार ने मुझको तुम जो मिले तब वो क्या हुआ जहां भी मिल गए।
1: माशिनाज मैं बहुत

तुम तो प्यार हो सजनी। और लता और मोहम्मद रफी जी ये गाना आपको सुनाए, फिल्म शहरा का। ये फिल्म लिखी थी इंद्रिय से अस्तक का, और ये नया गाना जो नहीं है पुराना गाना लिखी थी नेहने से अस्तक का है। और मुकेश जी इस गाना को गाया है फिल्म विश्वास का ये गाना। और मिलके सुना जाए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों।

और दोस्तों चांद की दीवार न तोड़ो और प्यार भरा दिल तोड़ दिया फिल्म विश्वास का ये गाना निहत होने निहने सस्तक का। और दोस्तों ये भी एक पुराना गाना हम चलाते हैं फिल्म विजयंती माला राजेंद्र कुमार का ये फिल्म है साथी का ये गाना और ये हम यहाँ से रेडियो फाहुन के माध्यम से चलाते हैं हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों और आओ मिलकर सुना जाए कि ये क्या गाते

और दोस्तों मेरी दोस्ती और मेरा प्यार, और इस गाना को मांग किया है और वो है सुरेश हरि प्रसाद भैया है नकन, बर्तन अर्तन धोई के भैया एकदम तैयार है। और बोले जॉनी ये गाना है फिल्म नूर जहां का, ये गाना है आओ मिलकर और हम सब और सुना जाए।

तुमको हमसे प्यार है, अब किस तरह से प्यार किया जाता है, यही कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाए हैं। अब प्यार की सिलसिला अगर है ही है तो हम आपको बताते हैं कि प्यार कैसे किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी हाँ, ये उदित नारायण कह रहा है फिल्म मोहरा में कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक और वगैरह वगैरह कैसे प्यार किया जाता है। चलो इन्हीं लोग से सुनते हैं, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को प्यार करना नहीं आता, तो सीख लेते हैं कुछ भी।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहुन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 तक 7 8 फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

और आम लोग जानते हैं हमारे यारो पुराने गीते की मजा कुछ और है। हम चलते हैं परमा श्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

और दोस्तों, प्यार में तो कभी कभी छोटी बात से बड़ी बात हो जाती है, आपको तो मालूम है। और कभी कभी प्यार में लोग भूल जाते हैं कि कौन से बात वो करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात है हमारे यारों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है ओ साथी रे।

0: क्या जीना है और रेडियो फाहुन के बिना कैसे रात कटेगी। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग किशोर जी के आवाज में।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है

और दिल की टुकड़ी टुकड़ी करके और मुस्कुरा के चले गई। उसके बाद पे हम एक और गीत को सुनाते हैं।

0: में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा आम
1: और जाम। तो ये बात है दोस्तों, यानी कि और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कुछ सॉन्ग्स आप लोग को। और ये सॉन्ग्स है यारन यारन, यानी कि बहुत पुराना नहीं है और बहुत नया भी नहीं है, कुछ मिली जुली गीत है। दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, गोविंदा करिश्मा कपूर ने इस फिल्म में काम किए हैं।

0: ओ मेरे दिल की चैन ओ सहनाई मेरे दिल को चुपाती लिए।
1: सुनो कहां कहां
2: सुना
1: कुछ हुआ क्या
2: अभी तो नहीं कुछ।

और आपको भी कुछ हुआ है? नजगिल लता जी किशोर दादा के ये गए हुआ जोंग है। अब आते हैं नजगिल लता जी और फरमा श्री मोहम्मद रफी का जोंग है।

राम ने प्यासा। दोस्तों एक गीत को और हम बढ़ते ही अतिशन हिट होर्डर वेंस, बहुत हिट फिल्म रहा और फिल्म के नाम ही धर्मात्मा का एक सॉन्ग हम चलाने जाते हैं। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं फिल्म धर्मात्मा का एक गीत।

और तुम जान हमारी हो, फिल्म के नाम है धर्मात्मा का ये एक हिट फिल्म सॉन्ग हम आप लोग को सुनाए। और अगर आपकी चांद कहीं खो गया होगा तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। फिल्म के नाम है क

श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है खोया खोया चांद, फिल्म का नाम है काला बाजार। के बाद हम चलते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं और कैसे चाहते हैं, यहाँ पे इस गीत बताते हैं। फिल्म के नाम है कुर्बानी, ये भी एक हिट फिल्म सॉन्ग यानी कि एक हिट फिल्म थे दोस्तों। और हम चलते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं कैसे।

और हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे कि कैसे। ये भी एक बहुत हिट फिल्म थी दोस्तों, कुर्बानी फिल्म के नाम है। तो हम चलते हैं मोहम्मद अजीज की ओर और अलका की ओर दोस्तों।

ऐ दिल और ऐ दिल है और ऐ दिल है दिल के बाद हम जाते हैं एगो बेस्ट ऑफ देवानंद सुपर हिट सॉन्ग और वो है एवरग्रीन देवानंद हिट सॉन्ग फिल्म के नाम है और काला बाजार का ये सॉन्ग है हमारे यारो और ये भी आप लोग को हम चलाएंगे।

और पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे, और पीपल झूमे मोरे आंगना, और ठंडी ठंडी छाँव रे। तो उसके बाद हम चलते हैं, फिल्म के नाम है धर्मवीर परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है अनहित सुपरहिट फिल्म।

और आकर यो दोस्तों मही फिल्म के नाम है और वो है धर्म और वीर का ये जोन है। और हमारे दोस्तों एक गीत और हो जाए तो मेरे ख्याल से और चलेगा। नहीं नहीं दोस्तों मुकेश माइती मुकेश करोड़ों का दिल चुराने वाला हार्ट ऑफ मिलियंस और वो है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में हसरत जयपुरी शैलेंद्र

लगी जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर, ओ हे करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

को पसंद होगा वही गीत जॉनी आपको सुनाएंगे। हमारे यारों ये सॉन्ग जो है दोस्तों पुराने गीतों की बाहर सॉन्ग है जो मेरे ख्याल से न सिर्फ मुझे आपको और आपकी बगल वाला या बगल वाली को भी अच्छा लगेगे और लातवेट में निमर्स फन मेरे दिलिए पुकारे आजा मूवी का नाम है नागिन।

पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। लता जी और तलत महमूद का ये जोन थे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर, और वो है अल्लाह जाने क्या होगा आगे। मनोज कुमार हरियाली और रास्ता का ये जोन है, हमारे यारों हरियाली रास्ता का ये जोन है।

और अल्लाह तो सबको जानते हैं कि इश्त में क्या क्या हो जाते हैं। तो दोस्तों इश्त में बहुत कुछ हो जाते हैं। तो हम चलते हैं इसके बाद में, हम चलते हैं मुझसे इतना प्यार मत करो लता जी तलत महमूद का ये सॉन्ग है। मुझे इतना ज्यादा प्यार मत करो कि मुझे अपने आप पे गर्व हो जाए।

और इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल एक मैं हूँ जो बादल आवारा जो यहाँ से वहां तक। और वो चलते ही तदलत महमूद का और नाइटिगेल वता जी का जोंग थे। आशा परीक सुनील लतीश फिल्म में काम किए। उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों और वो है नाइटिगेल लता मंगेशकर और को किशोर कुमार का। ये सॉन्ग है लिखा है तेरी आंखों में और आंब की आंखों में क्या है, आंब की आंखों में क्या है, ओ तो आपको पता है कि किस किस सपने आप देख रहे हैं।

आंखों में और आपकी आंखों में क्या लिखा है आपको तो पता है, साथ ही साथ चल रही कि पन्ना की तमन्ना में नाइटी गेल लचा जी किशोर दादा का ये सॉन्ग है। देवानंद सिंह तमन ने इस फिल्म में काम किया, इस मूवी में क्या और पूछा है कि तुम्हारे तमन्ना क्या है, पन्ना ने पूछ रहा है।

कौन मिल जाता है, हीरा मिल जाता है, नैतिकी लता जी का ये सॉन्ग थे। उसके बाद प्रेम चलते हैं मौफी के नाम असली नकली निकति होने द्रियन सस्तक का, जिसमें देवानंद ने काम किया है। हमारे दोस्तों मौफी के नाम है असली नकली का एक सॉन्ग है परमान श्री मोहम्मद रफी और नैतिकी लता जी का सॉन्ग है, जिसमें शंकर जयस्कन का म्यूजिक पे इसे काम किया है हसर जयपुरी के साथ में। तो हम चलते हैं मूवी का नाम है असली और नकली।

बांध लिया है मौफी के नाम थे। असली नकली के बाद में हम जाते हैं और मधुबाला की ओर परमाशीर मोहम्मद रफी और आशा जी का सॉन्ग है अच्छा ये मैं हारी काला पानी जोंग मूवी का नाम है।

0: जला।
1: और अच्छा ये मैं हारी चलो काला पानी का ये सॉन्ग है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का प्रोग्राम आज हम चलाते हैं। और ओल्ड एंड गोल्ड के बांध में अगला सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। प्यार ही प्यार देखा है तेरी आंखों में, बस प्यार ही प्यार, पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मोफी के नाम है प्यार।

प्यार ही प्यार मौफी का नाम है हमारे दोस्तों। और हाल कैसा है आपका, ये हम नहीं पूछते हैं, किशोर दादा ने पूछ रहा है। मधुबाला मौफी का ये जोंग है।

और हाल कैसा है आपकी आप बता दीजिए, मुझे इतना प्यार है और किससे ये आप भी मुझसे बताइए।

अरे तुमसे अपने ही दिल से पूछो, हम चलते हैं आओ आगे, आओ आगे। तो एक गीत है यहाँ पर, हम हमने प्लेयर पे रख चुका है, अखियों के झरोके से, और ये एक मस्त भरी टॉप सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

और अनोखो अन अन अखियों की झरोकी के बाद हम चलते हैं। आप जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, हमारा प्यार आप तक पहुंचे। और चाहे ठंड लगते हो और चाहे गर्मी का मौसम है, रेडियो फाहुन आपके साथ है। और धरती पे जहां भी रहेंगे, हमारा तुम्हारा प्यार अमर रहेगा।

हमसे और तुमसे प्यार इतना हुआ है कि साथ में राज बब्बर क्या कहते हैं वो भी सुना जाए।